0: आकाशवाणी जी सिंधी सरोजा 9870 किलोवाट से तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन ईयर मोबाइल ऐप एंड डी फ्रिडिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु निकिता आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत कलाम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ कुझु फिल्म गीत पेश कंदा ऐं ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। इहा आहे प्रोग्राम जी तफ़सील, तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कलाम साहब खे ॿुधूं।
1: अॼु न सुती कंत सां

भगत कौराम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम उतरिया या आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई और पेश आए तफसरो भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स आलमी सहकार से गड़ी करे एक अलहदा खोज रिपोर्ट कर है जो नालो ब्लू स्टैकर स्टार यानी कि BSS जो तैयार थियण की कार्रवाई में पात वो है तैसा सीधो सीधो सबूत तो मिले कि यह तारा कड़े नमूने से तैयार थन्दा है BSS यानी कि ब्लू स्टैगरल स्टार्स से एक खास तरह जहा तारा जो तारन के झुकट में पाता वेंदा जो दिसण में गरम तेज रोशनी वारा वधिक मादो रखंदा पैं बेन तारन की भेट में तेन लंबे अरसे का एस्ट्रोनॉमर्स के हैरत में वेदो तो सदन असुल कि तो ठे ए कड़े नमूने से ये तारा तारा जो तैयार थन्दा तारन के मास स्कैन के पुठियां जी वसी समत मनल माना

हुई थियरी हुई त ये स्टेलर मर्जर्स जे थ्रू तैयार थींदा आहिनि ऐं पाण खे वरी खां नौजवान बणाईंदा आहिनि। पर पोइ बि अहिड़नि तारनि जे तयार थियण जो जेको सिधो सबूत हो सो अॼु ॾींहुं ताईं कोन मिलियल हो। इन जी जांच पड़ताल लाइ भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स जेको हिकु डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST जो हिकु ख़ुदि मुख़्तियार इदारो आहे, तंहिंजे एस्ट्रोनॉमर्स हिकु ख़ासि चकास कई बाइनरी स्टार सिस्टम जंहिंजो नालो आहे TS 3275464 80 जेको नंबर ॾिनल आहे। सो हिकु क़दीम खुलियल तारो क्लस्टर आहे, झुकटो आहे कॉलेंडर 261 जेको की लॻभॻि 9500 लाइट ईयर्स हितां खां दूर आहे। हिन सिरिश्ते खे हिकु वाइदो कंदड़ उमेदवार तौरु सुञातो वियो वधीक जांच पड़ताल करण जे लाइ, छो जो हिन जेके प्रॉपर्टीज़ ते सलाह ॾेई रहियूं त ॿिनि वॾनि स्टार्स मंझि मशगूलियत हली रही आहे। हिन जांच में नासा TESS जे स्पेस मिशन तंहिं मां हाई प्रिसिशन लाइट कर्व्स ज़रिए जांच कई वई चकास कई वई ऐं यूरोप जे ॾाखणी ऑब्ज़रवेटरी जेका चिली में आहे तंहिंजे वॾे टेलीस्कोप ज़रिए मेजरमेंट वरिती वई। IIT जे फैकल्टी मेंबर ऐं चकास जे हिकु गॾियल लेखक अनुपूर्णी सुब्रमण्यम सम्झाईंदे चयो त असां ॾिठो त जेको ब्लू स्टैगरर आहे सो तमामु ई चुस्ती सां पंहिंजो मटेरियल पंहिंजे साथी तारे मां हासिलु करे रहियो आहे। इन तरह सां असांखे हिकु तारे खे ठहण जे अनदा ग्लिम्स झलक मिली आहे। असांजी खोज जेका आहे सा असांखे सिधो जांच जो सबूत थी मैसर कराए, जो हले ताईं त फ़क़ति थियरीज़ ई हली रही हुयूं। हुन ॾिठो त जेको बाइनरी सिस्टम आहे यानी कि जेको ॿ तारा कीअं था तयार थियनि हिक ॿिए मां, कहिड़े नमूने हू पंहिंजी मकनातेसी बाउंड्रीज़ सरहदूं था तयार कनि या उन्हनि खे पार करे था वञनि जंहिंखे रोके लोप चयो वेंदो आहे, तंहिंमें हिकु घटि मास मां हिकु वॾे मास में तब्दील थींदो आहे। खोजना कंदड़ इहो पिणु ॾिठो त इन हंध तां हिते एक्सरे इमिशन्स जो हिकु मज़बूत सिस्टम पातो वियो। अहिड़ी मज़बूत एक्सरे कार्रवाई जेका आहे सा तॾहिं थींदी आहे जॾहिं हिकु हंध खां मटेरियल ॿिए हंधु वेंदो आहे, ख़ासि करे तारनि जे ठहण महिल, तंहिं सां हिकु आज़ाद सबूत थो मिले त तारा कहिड़े नमूने तयारु थींदा आहिनि। BSS जे एनालिटिकल जांच मां पतो पियो त कहिड़े नमूने तारनि जे झुकटे मां जेके सिज खां 1.5-6-7 दफ़ा वॾा आहिनि ऐं कहिड़े नमूने पंहिंजो सोलर मास जे भेट में जिन जो मादो आहे सो 2.5-3% वधीक आहे, कहिड़े नमूने तयार था थियनि। इन जो ऑर्बिटल पीरियड जेको आहे सो 2.11 ॾींहं आहे यानी 2.5-1 ॾींहं आहे ऐं सदन मास रेशियो जेको आहे सो लॻभॻि 2.19% आहे ऐं जेका रोटेशन आहे सा 69.55 किलोमीटर फी सेकंड आहे। हिन नतीजे खे एस्ट्रोफिज़िक्स जनरल लेटर्स में पब्लिश कयो वेंदो, जंहिंजा लेखक आहिनि अली हसन शेख बिमन जे मेधी ऐं हितेंद्र सरकार से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जा आहिनि, अनुपूर्ण सुब्रमण्यम ऐं राम सागर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स बेंगलुरु जा आहिनि, सेरजियो मैसिना IIFF इटली, इन खां अलावा अनुपम भरद्वाज ऐं सुषमा दास IUCAA पुणे मां, एटिलो पोर्को लक्स ऑब्जर्वेटरी दे पेरिस फ्रांस मां ऐं मेरिना कॉन्केल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ फ्लोरिडा अमेरिका मां आहिनि। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश है फिल्म नगमन जो प्रोग्राम।

जडे ऐनक उतारे थो नज़ाकत सा निहारे थो नजर जो तीर मारे थो तबारण खूब बारे थो असांजो असांजो असांजो कानो भी।

கடந்து சப்பன சோறு.

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा ही पेशन खास खास खबरों पाकिस्तान पारा बेकायदे खयल जम्मू कश्मीर में मुजाहिरन मथा गोलीबाजी में 20 माण्हू मारिजी विया आहिनि। भारत इन कार्रवाई खे जंहिंखे पाकिस्तान असेंबली चूंडनि जो नालो ॾेई रहियो आहे, सो भारत इन खे पंहिंजे पाकिस्तान पारा बेकायदे खयल खे लिकाइण लाइ कॉस्मेटिक एक्सरसाइज़ करे कोठियो आहे। शांति पसंद मुजाहिरन मथां पाकिस्तान पारां ज़ोरी खयल कश्मीर में थियल गोलीबाज़ी में थियल मौतनि ते एमनेस्टी इंटरनेशनल जांच कराइण जो सॾु ॾिनो आहे। युगांडा पाण खे इबोला खां आज़ाद करे ऐलान कयो आहे, जो आख़िरी मरीज़ खे पिण सिहतमंद थियण खां पोइ डिस्चार्ज कयो वियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प वॉशिंगटन में यूक्रेन जे सदर व्लडिमिर ज़ेलेंस्की ऐं इज़राइल जे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सां अलॻि अलॻि गॾिजाणियूं कयूं। ऐं कॉमनवेल्थ रांदियुनि 2026 में भारत जे हरजिंदर कौर ऐं गुलवीर सिंह सोने जा बिला खटिया आहिनि। होॾां टे बॉक्सर्स सेमीफाइनल्स में पहुता आहिनि।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे वरी उहा सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो यानी भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 वॻे तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु

जिसकी गिजा टूटी चटाई जिसका बिस्तर नान जवी हो जिसकी गिजा कौन है ऐसा हाकिम अफसर।

का नाम आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए कि सारे ही असहाबे पयंबर रुश्दो हुदा के तारे हैं, सारे ही असहाबे पयंबर रुश्दो हुदा

उनसे चमका आपका नाम रोशन रोशन आपकी सीरत उजला उजला आपका नाम रोशन रोशन आपकी सीरत उजला

इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुस्तजाबुद्दीन मलिक का तहरीर करदा एक फीचर राजा मेहदी अली खां के हवाले से, जिसका उन्वान है जो हमने दास्तां उनकी सुनाई।

याद रखने की बात यह है कि अपने नाना के तबादलों की वजह से राजा मेहदी अली खां का बचपन जिस इलाके में गुजरा वहां की जबान छीना थी। उस इलाके के लोग वखी और ब्रोसी की जबानें भी बोलते थे। उर्दू उस इलाके में राब्ते की जबान थी जो घर के बाहर होंसा के पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरने पर सुनाई पड़ती थी, लेकिन चूंकि राजा मेहदी अली खां का ननिहाल उर्दू के जैयद आलिमों का था इसलिए उर्दू उनकी मादरी जबान थी और पंजाबी भी ददिहाल के इलाके यानी पंजाब में मुस्तामिल थी। उर्दू के मशहूर अदीब और सहाफी मौलाना जफर अली खां राजा मेहदी अली खां के मामू थे, लेकिन उनके बचपन के दौर में वो अलीगढ़ और हैदराबाद में मुकीम थे, जबकि राजा मेहदी अली खां का खानदान मशरकी कश्मीर और पंजाब में था। शायद इसी दूरी की वजह से राजा मेहदी अली खां ने कभी सियासत में दिलचस्पी नहीं ली, जबकि मौलाना जफर अली खां खिलाफत तहरीक के एक अहम सुतून थे और एक अहम मुजाहिद आजादी की हैसियत से पूरे मुल्क में जाने जाते थे। याद रखने की बात यह है कि मगरबी कश्मीर के हुंजा और चित्राल का माहौल और उसकी अक्कासी बसो औकात गैर शौरी तौर पर भी हमें राजा मेहदी अली खां की शायरी में नजर आती है। एक नज्म का यह हिस्सा देखिए। वीरान था सहरा खामोश था दरिया, दरिया के किनारे सर्दी से ठुठरता एक ओढ़ की टोपी चुपचाप था बैठा कुर्सी के लिए एक काला सा पहाड़। एक अपनी किताब अंदाजे बया में राजा मेहदी अली खां ने पहाड़ों के लिए बर्फ की टोपियां ओढ़े हफ्ती पहाड़ों का जुमला इस्तेमाल किया है। यह भी हमें इसी पराक्रम पहाड़ी सिलसिले और वादी हुंजा की याद दिलाता है। अपनी वालिदा मामों और भाई बहनों के इज्तमाई अदबी जौक की वजह से राजा मेहदी अली खां कम उम्र में ही शेर लिखने लगे और तर्जुमे में भी महारत हासिल कर ली। बच्चों के लिए अदबी तख्लीकात और तर्जुमे की महारत के बाइस राजा मेहदी अली खां को जैद बुखारी ने नून मीम राशिद के हवाले किया और इस तरह राजा मेहदी अली खां दिल्ली में रेडियो के रिसाले आवाज के तर्जुमों के साथ साथ बच्चों के प्रोग्राम की जिम्मेदारियां निभाने लगे।

आदमी राजा मेहदी अली खां मुंबई आ गए। पहले पहल वो फिल्मिस्तान में मकालमा नवीज बने और अच्छे स्मार्ट और खूबरू इंसान थे। इसलिए मंटो की कहानी पर मबनी अशोक कुमार की फिल्म आर्जुन में राजा मेहदी अली खां को अदाकार के तौर पर भी काम मिल गया। यह फिल्म सचिन देव बर्मन की पहली फिल्म थी और ये फिल्म वाहिद ऐसी फिल्म थी जिसमें राजा मेहदी अली खां के साथ साथ सादत हसन मंटो और उपेंद्र नाथ अश्क ने भी काम किया। राजा मेहदी अली खां इस फिल्म में अशोक कुमार के बहनों के किरदार भी थे। इत्तेफाक ये रहा कि उपेंद्र नाथ अश्क ने अपने दुश्मन और अपने दोस्त मंटो से इंतकाम लेने के लिए फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी मसाइल पैदा किए और जिसकी वजह से एक बार फिर मंटो से उनका झगड़ा हो गया। और मजे की बात यह है कि मंटो खुद अश्क को फिल्मिस्तान लेकर आए थे। खैर नतीजा इस कशाकश का ये रहा कि फिल्म ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई और राजा मेहदी अली खां की अदाकारी की करियर का भी खात्मा हो गया। लेकिन एस डी बर्मन का नाम

वाकारी और मकाल मनिगारी के बाद राजा मेहदी अली खान ने सन 1946 और 47 में फिल्म दो भाई के लिए गाने लिखे और उनके अंदर के तख्लीकार को सामने आने का एक नादिर मौका मिला। इस फिल्म का नगमा याद करोगे एक दिन हमको और मेरा सुंदर सपना बीत गया, ये दोनों गीत बहुत कामयाब साबित हुए।

मदन मोहन और राजा मेदी अली खान की दोस्ती के पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। असल में इन दोनों ही के बुजुर्गों का ताल्लुक चकवाल शहर से था, जो इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर वाकई एक पुरफजा मकाम है। मौसीकार मदन मोहन के दादा हकीम योगराज कोहली चकवाल के नजदीक ही एक गांव बोन के मारूफ हकीम थे। दूसरी जानब राजा मेदी अली खान के खानदान का ताल्लुक चकवाल के करीब ही एक और गांव हरनपुर से था। चुनांचे दोनों के लहजे, आदात और अतवार और तहेदारी में एक मुश्तरक रंग था, जिसने उन्हें एक जान दो काली बना दिया। वो कौन थी फिल्म का गीत लज्जा गले फिल्मी तारीख के 10 बेहतरीन गीतों की

अभी आप सुन रहे थे नगमा निगार राजा मेहदी अली खां पर ये फीचर जो हमने दास्तां उनकी सुनाई। तहरीर जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक की थी और पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी। इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आज दिन में 3:30 पर सुना जा सकेगा। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

चादर कहीं आ जाए वो नजर कहीं तन्हाई में अदर कहीं आ जाए वो नजर कहीं कहीं ये हाथों में हाथ डाल ऐ गुल तेरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल

मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों मोए हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमा, मुद्दत से दिल उड़ा दादा, साथ है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

वारंट फिल्म का नगमा अभी आपने सुना आवाज थी किशोर कुमार की। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में है फिल्म है प्रिंस।

0: पहले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा।
1: मुकेश की आवाज में ये नगमा था संगम फिल्म से। आज की प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले की आवाज में फिल्म है मेरा साया।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए गीतों भरी कहानी प्यार का आंचल।

हॉस्टल के तमाम साथियों से बेपनाह प्यार दुलार मिलने के बावजूद आरिफ अपने आप को तरह महसूस करता। आरिफ दो बेटियों में एक इकलौता बेटा था। माँ बाप की आंखों का नूर, दिल का सुरूर। पहली बार माँ बाप से जुदा होकर पढ़ने के लिए कश्मीर आया था। यहाँ आए हुए उसे 3 महीने गुजर गए। उसे घरवालों की याद बराबर सताती। दोस्तों के साथ तफरी में भी उसे मजा नहीं आता। एक दिन सुबह वो अकेला ही तफरी के लिए निकल पड़ा। हॉस्टल से कुछ दूर चला था कि कश्मीर की इस हसीन वादी में किसी के गाने की आवाज सुनाई दी।

आरिफ ने देखा, अरे ये तो मेरी ही क्लास के लड़के फराह खानम है। गाना खत्म हुआ तो आरिफ ये शेर पढ़ते हुए उसके पास गया, अगर फिरदौस बर्रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। पास जाकर उसने कहा, आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, मैं आपकी आवाज के जादू से इधर खिंचा चलाया। हाय अल्लाह, कहते हुए फरहा अपनी सहेलियों के हमरा भाग गई। आरिफ देखता ही रह गया। रात भर आरिफ फरहा खानम के ख्याल में डूबा रहा। उसे इस लड़की में अजीब सी कशिश महसूस हुई, वह उसकी तरफ मायल होता गया। कॉलेज कैंटीन में दोस्तों के बीच बैठा आरिफ फरहा के ख्यालों में डूबा था कि फरहा भी सहेलियों के साथ वहां आ गई। एक मनचले दोस्त ने कहा, यार ये कश्मीरी सेब किसकी किस्मत का है। दूसरा बोला, प्यारे ये डिलीशियस है, बड़ा कीमती सेब है। आरिफ खामोशी से देर तक उसे निहारता रहा। फरह ने आरिफ की यादा देखी तो उसके दिल में भी अजीब सी हलचल होने लगी। महफिल जमी हुई थी, तंजो मिजाज चलता रहा। महफिल जब उठने लगी तो आरिफ ने ये शेर पढ़ा, इस तरह किया कीजिए मुलाकात कहीं और, दिन को तो मिलो हमसे, रहो रात कहीं और। ये शेर सुनते ही दोनों तरफ हंसी का एक फव्वारा छूट पड़ा और आरिफ को खूब दाद दी जाने लगी। आज का हीरो आरिफ को कहा गया। आज फिर इतवार की छुट्टी थी। आरिफ अकेला ही घूमने निकल पड़ा। आसमान पर घटाएं घिरी हुई थी और मौसम खुशगवार था। आरिफ के मुंह से ये बोल निकल पड़े,

धीरे दोनों की मुलाकात जोर पकड़ने लगी और अब तो फुर्सत के बेशतर औकात साथ ही गुजारते। फरह की खालाजान करीबी के एक गांव में रहती थी। वो दोनों कभी कभार खालाजान के घर भी जाते। आरिफ की मासूमियत पर खालाजान को भी प्यार आया। उन्होंने उसे

अपना बेटा बना दिया। अपनी दोनों लड़कियों की शादी के बाद खालू साहब और खाला जान को सोना घर जैसे काटता था। आरिफ और फरह के आने से उनके घर में चहल पहल हो जाती। एक दिन सब लोग पीर बाबा शकरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह की जियारत करने गए। आरिफ ने देखा इस ऊंचाई पर भी बाबा शकरुद्दीन के अकीदतमंदों का मेला लगा हुआ है। कोई चादर चढ़ा रहा है, कहीं कव्वाली हो रही है तो कहीं मनकबत।

तुमने दरगाह पर रंगीन धागा बांधकर क्या मन्नत मानी है? आरिफ ने फरहा से पूछा। मैं क्यों बताऊं, भला आपने क्या दुआ मांगी है, आप बताइए। फरहा ने पूछा, मैंने तो खुदा से तभी मांगा है, बस मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहो तुम्हारा क्या ख्याल है? आरिफ ने आज अपने दिल की बात बयान ही कर दी। फरहा हल्की सी मुस्कुराई और गाने लगी।

फरहान ने कहा, देखो आरिफ, अब इम्तिहान सर पर आ गए हैं, पहले खूब मेहनत से पढ़ाई करो, फालतू बातों में दिल मत लगाओ, वरना तुम्हारा मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कसूरवार ठहराकर बद्दुआ देंगे। नहीं नहीं फरह, तुम्हें कभी कोई बद्दुआ नहीं दे सकता, तुम तो मेरी जान हो और मेरी जान मेरे मम्मी पापा को बहुत प्यारी है। खुदा का शुक्र है आज इम्तिहान का आखिरी पर्चा भी हो गया, अब तो वापस जयपुर जाना पड़ेगा, कल हम लोग रवाना होंगे। फरह, मेरा दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगेगा, तुम अपनी शादी के फैसले के मुतालिक कल मुझे फाइनल जवाब दो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। तुमने कहा था पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ फिर शादी की बात सोचना, बस मैं जैसे तैसे सर्विस मिलने तक ही सब्र करूंगा, इसके बाद फौरन मम्मी पापा को साथ लेकर शादी की बात करने यानी मंगनी करने आ जाऊंगा और फिर एक साल के अंदर हम शादी कर लेंगे। इतनी देर में आरिफ के साथ ही टैक्सी ले आए और सामान उस पर रख दिया। जुदाई के गम से सब लोगों के दिल गमगीन और आंखें भीगी हुई थी। आरिफ ने खाला जान से सर पर हाथ रखवाया और उसके बाद वो फरह की तरफ बढ़ा। फरह ने एकदम उसके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। आरिफ ने जैसे ही सब लोगों से रुख्सत लेकर टैक्सी में कदम रखा और टैक्सी रवाना हुई, फरह के मुंह से बस यही बोल निकले,

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी प्यार का आंचल। तहरीर जनाब अब्दुल खालिक शम्स की थी और रावी थे एसएम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जाबराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्त दो दिन के दौरान बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। मगरबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमरीका और सऊदी अरब की फोर्सेस ने इराक में ईरान से वाबस्ता ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरक कार्रवाई की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दौलत मुश्तरक खेलों में गुलवीर सिंह मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। खवातीन के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने भी चांदी का तमगा हासिल किया। और बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ अगले माह की 15 तारीख से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सरकार की वैश्याना कार्रवाई में गुज़श्त दो दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरान मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मौलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आजादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मवासलाती खिदमात बहाल की जाएं और वहां मीडिया और आजाद मुशाहिदीन को जाने की इजाजत दी जाए। अमरीका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमरीकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमरीका ने यह दावा भी किया कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में ये इल्जाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाजों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक और असलाह रखने के मकामात को निशाना बनाया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की और वजीर आजम नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें खत्म की हैं और दोनों मीटिंगें मुस्बत और नतीजा खेज रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहायशगाह पर सरकार के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की दूसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने खजाने, मईशत, कॉमर्स, सनअत और टेक्नोलॉजी के

0: अमेरिकी फोर्सेज को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब की फोर्सेज ने इराक में ईरान से वाबस्ता ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वलोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। भारत मुश्तरका खेलों में गुलवीर सिंह मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। खवातीन के वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने भी चांदी का तमगा हासिल किया। और बीसीसीआई ने श्रीलंका खिलाफ अगले माह की 15 तारीख से शुरू होने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

0: क्या दिल बेकरार है, मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है, आज सोमवार
1: है,
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था आराधना फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आनंद बख्शी और लता मंगेशकर को सुनिए। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में जर थी फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। यह मन्ना डे और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था प्यार का मौसम फिल्म से। अब सुनिए आशा भोसले के साथ महेंद्र कपूर को, फिल्म है बूंद जो बन गई मोती।
1: लवली लवली है तमा, हम तुम दोनों

lovely, lovely, handsome.

0: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा अभी आपने दो झूठ फिल्म से सुना। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है मथुरा, एक तारीखी शहर।
1: हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुकदस मकामात, मंदिरों, मजारों वगैरह से बड़ी तादाद में लोग रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं। मथुरा का शुमार उन्हीं मकामात में से होता है। मथुरा हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश का शहर है। तारीखी और मजहबी सियाहत के लिए पूरी दुनिया में यह मशहूर है। यह शहर लंबे अरसे से कदीम हिन्दुस्तानी तहजीब व तमद्दन का मरकज रहा है। हिन्दुस्तानी मजहब, फलसफा, फरमादब की तामीर और तरक्की में भी मथुरा का बहुत अहम किरदार रहा है। आज भी अजीम शायर सूरदास, मौसीकी के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के उस्ताद स्वामी वरजानंद, शायर दस खान वगैरह अजीम हस्तियों से इस शहर का नाम जुड़ा हुआ है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह इलाका तहजीबी व सकाफती एतबार से ब्रज के नाम से भी मशहूर है। कदीम अदब में मथुरा को कई नामों से मुखातिब किया गया है, जैसे शोरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी या मधु वगैरह। हिन्दुस्तान का वो हिस्सा जो हिमालय और विंध्याचल के दरमियान में वाकई है, ऐसे कदीम में आर्यवर्त कहलाता था। यहां पर पनपी हुई हिन्दुस्तानी तहजीब को जिन धाराओं ने सींचा वो गंगा और जमुना की धाराएं थी। इन्हीं दो नदियों के किनारे हिन्दुस्तानी तहजीब के कई मराकज बने और तरक्की पाई। वाराणसी, प्रयाग, कौशाम्बी, हसतनापुर, कन्नौज वगैरह कितने ही ऐसे मकामात हैं, लेकिन यह फहरिस्त तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इसमें मथुरा को शामिल न किया जाए। मथुरा आगरा से दिल्ली की जानिब और दिल्ली से आगरा की जानिब बिलतरतीब 58 किलोमीटर शुमाल मगरिब और 145 किलोमीटर जुनूब मगरिब में जमुना के किनारे कौमी शाहराह नंबर 2 पर वाक़ है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधु दानों का शहर कहा गया है और यहां लोकासुर की दारुल हुकूमत बताई गई है। इस सबाक में इसको माधु देवते के जरिए बसाया गया शहर बताया गया है। लोनासुर जिसको शत्रुघ्न ने जंग में शिकस्त देकर मारा था, इसी मधुदानों की औलाद था। इससे पता चलता है कि मधुपुरी या मथुरा अहद रामायण में बसाया गया था। रामायण में इस शहर की एक बालमंदी का जिक्र है। इस शहर को लोनासुर ने भी सजाया संवारा था। मथुरा के चारों तरफ शिव मंदिर है। मशरक में पेश्वर का, जुनून में रगेश्वर का, शुमाल में गुकर्णेश्वर का और मगरिब में बुधेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों सिमतों में वाकई होने की वजह से शिवजी को मथुरा का कोतवाल कहते हैं। मथुरा को कदीम वारा, बुधेश्वर इलाके के नाम से भी जाना जाता है। वारा जी की गली में नीलवारा और श्वेतवारा के खूबसूरत अजीम मंदिर हैं। श्री कृष्ण के परपोते व्रजनाभ ने भी केशवदेव जी की मूर्ति कायम की थी। कदीम केशव मंदिर की जगह को केशव कटरा कहते हैं। खुदाई होने से यहां बहुत सारी तारीखी अशिया हासिल हुई थी। पास ही कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है। कंकाली टीले में भी बहुत सारी चीजें हासिल हुई। इस कंकाली से मुतालिक यह भी मशहूर है कि इसे देव की कन्या समझकर कंस ने मारना चाहा था, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर आसमान की तरफ चली गई थी। मशहूर जगह पवित्र कुंड के पास भगवान श्री कृष्ण की जय पैदाइश है, जिसमें वसुदेव और देवकी की मूर्तियां हैं। इस जगह को मल्लपुरा भी कहते हैं। इस मंदिर के अलावा यहां मंदिरों का एक लामुतनाही सिलसिला है। भगवान ने कंस के कत्ल के बाद यहीं पर आराम किया था। रोजाना सुबह शाम यहां जमुना जी की आरती होती है, जिसकी खूबसूरती देखने के लायक है। रामजी द्वार में श्री राम जी का मंदिर है। वहीं गोपाल जी की मूर्ति है, जिसमें 24 अवतारों के दर्शन होते हैं। यहां रामनवमी को अजीमुशान मेला लगता है। ये सब मथुरा के मशहूर मारूफ मकामात हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े मकामात हैं, जिनकी वजह से मथुरा को काफी शोहरत हासिल हुई। मथुरा को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मथुरा में मौसीकी का चलन भी बहुत कदीम है। यहाँ के कदीम मौसीकारों की मुस्तनद जानकारी 16वीं सदी के भक्ति काल से मिलती है। इस शहर में कई मौसीकार विष्णु संत के हुए हैं। स्वामी हरिदास जी, उनके उस्ताद अशोकधीर जी और उनके शागिर्द तानसेन वगैरह के नाम अहमियत के हामिल हैं। बैरू बाबरा के उस्ताद भी स्वामी हरिदास जी कहे जाते हैं, लेकिन बैरू बाबरा ने शायर मौसीकार गोविंद

0: स्वामी जी से ही मौसीकी का दर्स लिया था। स्वामी हरिदास जी ने ही असल में ब्रज मौसीकी की रिवायत चलाई। बांसुरी ब्रज की खास पहचान है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को हर खास आम जानता है और इसी वजह से उन्हें मुरलीधर और वंशीधर वगैरह के नामों से पुकारा जाता है। मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन लंबे वक्त तक मौसीकी के मराकज बने रहे और यहाँ पर दूर दूर से लोग मौसीकी के फन को सीखने की गरज से आते रहे। ब्रज में रसिया कदीम मौसीकी का फन है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मुतालिक पद रसिया वगैरह मौसीकी के साथ रासलीला का एहतमाम होता है। खवातीन के जरिए झूला झूलते वक्त गाये जाने वाले मल्हार गीत का ताल्लुक ब्रज से ही है। लोक गीतों में रसिया ढोला आला चौबाला वगैरह मौसीकी भी वक्त वक्त पर सुनने को मिलती है। इसके अलावा मौसमी गीत घरेलू गीत सकाफती गीत वक्त वक्त पर मुख्तलिफ तबकों में गाये जाते हैं। मथुरा में कई मकाम ऐसे हैं जो काबिले दीद हैं, जैसे प्रेम मंदिर वृंदावन जामा मस्जिद शाही मस्जिद ईदगाह दौला मौला घाट विश्रम घाट मथुरा का म्यूजियम कृष्ण जी की जन्मभूमि इस्कॉन मंदिर जय गुरुदेव मंदिर बंगाली घाट और दाऊ जी बड़े मदन मोहन जी मंदिर वगैरह। मथुरा से वृंदावन के रास्ते में बांके बिहारी मंदिर गोवन मंदिर शांति कुंज और बिरला मंदिर भी बहुत मशहूर हैं। ब्रज की होली भी बहुत मशहूर है। श्रीकृष्ण राधा और गोपी ग्वालों के बीच की होली की शक्ल में गुलाल रंग केसर की पिचकारी से खूब खेलते हैं। वहां की लठ मार होली की भी अपनी एक अलग पहचान है, जिनमें औरतें रंगों के साथ लाठियों कोड़ों वगैरह से मर्दों को घेरती हैं। इन तमाम बातों के मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मथुरा शहर तीनों लोकों से प्यारा है। मथुरा के रहने वाले तो यहां तक कहते हैं, तीनों लोकों से प्यारी मथुरा नगरी हमारी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। मौजू था मथुरा, एक तारीखी शहर। तहरीर जनाब अबू जहीर रब्बानी की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मिली सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत आइए अब सुनते हैं कुछ और फिल्मी नगमे।

हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में यह नगमा आपने घात फिल्म से सुना। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में है। फिल्म का नाम है मासूम।

0: अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में ये नगमा था मासूम फिल्म से। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से आलमी खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जाबिराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्ता दो दिन के दौरान बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। मग़रबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेज को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमरीका और सऊदी अरब की फोर्सेज ने इराक में ईरान से वाबस्ता ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरक कार्रवाई की है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। जनूब मगरबी जापान के कुमामोटो इलाके में शदीद जलजला आने से 13 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। और दौलत मुश्तरका खेलों में बलवीर सिंह मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। खवातीन के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने भी चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सरकार की वहशियाना कार्रवाई में गुज़श्ता दो दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरअमन मुजाहरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए, जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक के अलमबरदार तंजीम एमएसटी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन के खिलाफ मुहलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आजादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मुवासलाती खिदमात बहाल की जाए और वहां मीडिया और आजाद मुशाहिदीन को जाने की इजाजत दी जाए। अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने मग़रबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमरीकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्लह फोर्सेज ने इराक में यह इल्जाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाजों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकामात को निशाना बनाया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन एविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की और वजीर आजम नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें खत्म की हैं और दोनों मीटिंगें मुस्बत और नतीजा खेज रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारत के सफारतखाने ने बताया है कि वो एमवी अमीरी और उस पर सवार भारतीय जहाजियों के बारे में बहुत फिक्रमंद है और इस मामले को अव्वलीन तरजीह देता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सफारतखाने ने यह जानकारी दी है और उसने यह भी कहा है कि इस पर सवार तमाम भारतीयों की सलामती और तहफ्फुज़ के बारे में तमाम मुतालिकीन के साथ लगातार राब्ता कायम किए हुए है। बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के महकमे के मरकजी वजीर सरबरन सोनोवाल ने बहरी जहाजों के आलमी रूट्स पर असरअंदाज होने वाली बढ़ती हुई जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी के तनाजुर में महाज

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जाबराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्ता दो दिन के दौरान बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। मगरबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेज को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमरीका और सऊदी अरब की फोर्सेज ने इराक में ईरान से वाबस्ता ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। जनूब मगरबी जापान के कुमामोटो इलाके में शदीद जलजला आने से 13 अफराद की जाने तलफ हुई हैं और दौलत मुश्तरका खेलों में गुलवीर सिंह मर्दों के 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। खवातीन के वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने भी चांदी का तमगा हासिल किया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे थे। दिन के 1:15 होने को हैं। हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं। 3 बजे दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

दोस्तों डायरेक्टर मोहन कुमार की इस फिल्म में मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र के साथ राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, शशिकला जैसे सितारे नजर आए और साथी कलाकारों में थे गजानन जागीरदार, सुलोचना लटकर और नजीर हुसैन। धर्मेंद्र ने अपने करियर में रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर खूब नाम कमाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में आई मिलन की बेला में पहली और आखिरी बार विलेन का किरदार निभाया था। और मजे की बात तो ये है कि इस फिल्म के बाद वो हीरो के तौर पर इतने मशहूर हो गए कि फिर कभी नेगेटिव रोल नहीं किया। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वहीं राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी।

दोस्तों, अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो एक अमीर व्यक्ति की दुनिया उस वक्त बिखर जाती है इस फिल्म में, जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। अपनी पत्नी को इस सदमे से बचाने के लिए वो नर्स की सलाह पर अपनी नौकरानी लक्ष्मी यानी सुलोचना लाटकर के जुड़वा बेटों में से एक को गोद ले लेता है। आगे क्या होता है बताएंगे आपको इस गाने के बाद।

दोस्तों, समय बीतता है और जुड़वा भाई अलग अलग परिवेश में बड़े होते हैं। श्याम यानी राजेंद्र कुमार अपनी गरीब माँ के साथ गांव में बड़ा होता है और किसान बनता है, जबकि रंजीत यानी धर्मेंद्र अमीर माता पिता की देखरेख में शहर में पला बड़ा होता है। श्याम गांव के किसानों की भलाई के लिए श्री चौधरी यानी नजीर हुसैन के सहकारी आंदोलन से जुड़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात श्री चौधरी की बेटी बरखा यानी सायरा बानो से होती है। दोनों एक दूसरे से

0: प्यार करने लगते हैं। और इस बीच रंजीत यानी धर्मेंद्र विदेश से लौटकर उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहने आता है। कुछ ही समय में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बीच कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके सामने एक बड़ी परीक्षा रखने वाली है। रंजीत को भी बरखा से प्यार हो जाता है, और जब उसे पता चलता है कि बरखा भी श्याम से प्यार करती है, तो बरखा के प्यार को खोने का अपमान और उसे पाने का जुनून, और बस यहीं से शुरू होता है रंजीत की भूमिका का ग्रेट शेड्स, और जल्द ही गलतफहमियों और षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है। श्याम पर चोरी और एक अन्य झूठा आरोप लगाया जाता है। परिस्थितियां बिगड़ती है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है। रंजीत को अपनी असली पहचान का पता चलता है और दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। फिल्म दोस्ती, प्रेम, त्याग और सच्चाई की जीत की एक भावनात्मक कहानी है।
1: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कदे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू

इसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। दोस्तों, अपने शानदार संगीत, दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के कारण ये फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसे आज भी याद किया जाता है।

कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म थी आई मिलन की बेला। बहुत से दोस्तों ने हमें मेल किया है, तो चलिए आइए देखते हैं किन किन दोस्तों ने हमें मेल किया है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। गांव लोगर ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूर गिल, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित। अगला मैसेज आया है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिंपा और पूजा परिहार। अगला मैसेज किया है जी हमें बागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। अब सुन लेते हैं एक गीत और उसके बाद फिर पढ़ेंगे आपके मेल।

दोस्तों अगला मेल आया है संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भारत मकर, कमल सहानी का। इन्होंने हमें मैसेज किया है पिंगा वाला चौक गोरैया जलंधर पंजाब से, और अगला जो मैसेज आया है मैसेज गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा और पूनम गंगनेजा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।

दोस्तों इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2:30 पर एक ही कलाकार में आपके साथ रहेंगी राखी बनर्जी।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम अभी आपने सुना। हमारी आज की फिल्म थी आई मिलन की बेला। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिब तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मामले पर लोकसभा में बहस से कतरा रही है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने अमनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मरम्मत की है और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है और आज दुनिया भर में शेरों का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पर गौर व खोज और मंजूरी के लिए बहस जारी है। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तजाम हैं जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और सजा याफ्ता अफराद की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। इसमें मुकदमात की तहकीकात 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने और 3 महीने के अंदर मुकदमात का फैसला कर देने की तजवीज है। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मामलकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में यह बिल पेश किया था। बहस में हिस्सा लेते हुए जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट दिनेश्वर कामत ने बिल पेश किए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह कानून तलबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के साथ साथ तालीमी निजाम में शफाफियत को भी फरोग देगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के अरकान ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 की दफात पर बहस के दौरान कोई बात नहीं की बल्कि गैर मुतालिका सियासी मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि यह तरमीमी बिल तलबा के खदशात और मुतालबात के जवाब में पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल को लाने के वजीर आजम के फैसले ने इम्तिहान के निजाम पर तलबा के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग दिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: लोकसभा ने उस मुशरका पार्लियामानी कमेटी की मुद्दत में तौसी कर दी है जो एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक कानून साजी पर गौर कर रही है। इस कमेटी की मुद्दत पार्लियामेंट के 2026 के मौसम सरमा के इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ाई गई है। कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने आईन में 129वें तरमीमी बिल 2024 और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 के साथ मुश्तरका कमेटी की मुद्दत बढ़ाने की तहरीक पेश की। इस तहरीक को ऐवान ने जबानी वोट से मंजूर कर लिया। बीजेपी के बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने, जिनमें झारखंड के अराकीन भी शामिल थे, पार्लियामेंट के अहाते में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने पर एहतजाज किया। उन्होंने सीबीआई से इसकी तफ्तीश कराने और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी के रहनुमा संजय सेठ ने भी इस मामले की सीबीआई से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। जनाब सेठ ने इस बात पर जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं और यकीनन उन्हें इनसे फायदा पहुंचेगा। आज राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि अपोजिशन ने नीट मामले पर तलबा पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई की वजह से ऐवान में शोरगुल

0: किया, जब पहले इल्तवा के बाद दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर चेयरमैन ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से बात की और इमदादी कोशिशों का जायजा लिया। वहां बालाई आसाम में जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनाब शाह ने सैलाब की सूरत हाल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और भारत सरकार की तरफ से मुतासर इलाकों में तामीर नौ बहाली और तमाम जरूरी इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान शिवसागर गोलाघाट चराईदेव और जोरहाट के सैलाब से बुरी तरह मुतासरा जिलों में इमदादी और बाजाबादकारी के काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। आसाम सरकार ने हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बहुत से इमदादी और बचाव इकदाम का ऐलान किया है। इन इकदाम में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को फौरी माली इमदाद देना भी शामिल है। इसके अलावा मुतासरा कुनुओं को भी माली मदद और तलबा को तालीमी मदद दी जाएगी। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतअद्दिद बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाजे में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने जीएफएस गैलेक्सी एमटी अलबाहिया और एमटी मुम्बासा समेत कई बहरी जहाजों पर इस माह आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाजों की बिला रूकावट और आजादाना आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहिमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी यूके पीएनपी ने गहरी तशवीश का जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। अभी खबर मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज दुनियाभर में शेरों का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वजीर आजम ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हमाहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रिवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज्यादा तकवीत मिली है। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निजाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसायटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से 2 अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मरम्मत की है और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And now the news in detail. The Lok Sabha continued discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Participating in the discussion, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said the education system in the country has now become very expensive. He alleged the money spent on conducting NEET UG examination is more than the education budget of the country. Mr. Gandhi said that the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi against the Union Home Minister Amit Shah. Mr. Rijiju demanded that Mr. Gandhi should apologize in the House for his remarks. The discussion is underway.
2: कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बटोरने के लिए ऐसा नहीं हो सकता ये भारत का संसद है यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए.
1: Meanwhile, the Lok Sabha is adjourned till 2:30. Earlier, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premachandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the changes brought in the proposed bill are merely cosmetic. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, had moved the bill in the House yesterday. Meanwhile, Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over the NEET issue. Responding to the issue, Leader of the House, J.P. Nadda, said it was a routine law and order matter, adding that the police take appropriate action whenever any student engages in activism and takes the law into their own hands. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues. He said the amendment has been introduced in response to concerns and demands of the students and asserted that the Prime Minister's decision to bring the bill has strengthened students' confidence in the examination system.
3: Rahul Gandhi is using all kind of undemocratic languages which is not in the setting for correct discourse in parliamentary democracy. One must use civilized and soft language. We may differ with each other. But the way Rahul ji is using this demeaning kind of languages which is not good for democracy, which is not good for our country.
1: Several BJP MPs, including from Jharkhand, today staged a protest at Parliament premises over alleged paper leak of the Jharkhand Public Service Commission examination, demanding a CBI inquiry into the case and the resignation of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Meanwhile,

0: locations Jaspur, Bhadrak, Baleswar and Keunjhar are among the most affected districts. In Bhadrak, several villages in Dhamnagar and Bhandari Pokhari blocks remain submerged while road connectivity between Jaspur and Dhamnagar has been snapped. 17 teams of NDRF and ODRAF have been deployed for rescue and relief operations. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: The India Meteorological Department or IMD has forecast very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Vidarbh for the day. The IMD has said that Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Delhi, Konkan, Goa, Kerala and Mahe may experience heavy rainfall till tomorrow. India has strongly condemned recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz, saying targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end. Permanent representative of India to the United Nations, Parvata Naini Harish, said after a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. He said that free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways must be restored.
2: The Middle East, which is West Asia, is a region of immense importance to India. Our stakes in the security and stability of the region are high. India's trade and energy supply chains are strongly linked to this region. With bilateral annual trade of around $180 billion, accumulated foreign direct investment of over $31 billion and remittances of more than $52 billion from GCC alone,
1: At least 40 people were killed and dozens injured in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, over the last 2 days during a brutal crackdown by Pakistani forces amid escalating unrest in the region. Citing reports, the United Kashmir People's National Party on Wednesday alleged that around 40 civilians were killed while several others were injured and arbitrarily arrested between 27th and 28th of July in Rawalkot, Mirpur and other areas of the occupied territory. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species, but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
4: इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन कंजर्वेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 2226 टू ओवर 3600 टाइगर रिजर्व्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 47 टू 58 एंड एलिफेंट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 28 टू 32 अंडरस्कोरिंग द कंट्रीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 26 टू 100
3: डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई.
1: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा. सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है. गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडब्ल्यू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
6: कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर होते आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बताने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
5: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
7: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैक लिस्ट किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैक लिस्ट किया, फिर उसको बुलाकर पिछले चार सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैक लिस्टेड है आपने भी किया, खाली पड़ोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं की सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है।
5: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
8: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
5: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
9: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
5: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
10: असम में शिवसागर, घोलाघाट, सोरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
5: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
11: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें चार लोगों की मौत हुई है और छह जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: भारत में होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
12: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है।

0: तुरंत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
1: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
2: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
3: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
2: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत में होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हीरो से लेकर

विलेन तक हर किरदार में जान फूंक देने वाले एक्टर संजय दत्त को भला कौन नहीं जानता। फैंस और पूरा बॉलीवुड इन्हें प्यार से संजू बाबा कहता है। आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1959 को मुंबई में मशहूर एक्टर सुनील दत्त और एक्ट्रेस नरगिस के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जो आगे चलकर संजय दत्त के नाम से जाने गए। आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम इन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की सवारी रही जिस पर एक बायोपिक फिल्म संजू जो कि 2018 में बन चुकी है जिसमें इनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऐसे में आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ और अनसुनी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म यलगार का ये रोमांटिक सा गाना।

0: थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो दिन आती।

और आज के हमारे कलाकार हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। पिता सुनील दत्त और माता नरगिस हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे, जिस वजह से इनका बचपन फिल्मी माहौल में बीता। इनकी दो छोटी बहन हैं प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। संजय ने अपनी शुरुआती एजुकेशन हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल सनावर से पूरी की है। बाद में इन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान इनका झुकाव फिल्मों की तरफ था। महज 12 साल की उम्र में इन्होंने पिता की फिल्म रेशमा और सेरा में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया। फिल्म में खुद सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान और राखी गुलजार जैसे दिग्गज एक्टर्स थे। फिर करीब 10 साल बाद पिता ने इन्हें अपनी फिल्म रॉकी में लॉन्च किया, जो हिट साबित हुई। पर इस दौरान संजय पर दुखों का पहाड़ टूटा, इस बारे में आगे जानेंगे। पर उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म रॉकी का ये बेहतरीन गाना।

0: फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं संजय दत्त, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, 1981 में रिलीज फिल्म रॉकी से संजय दत्त ने एज ए लीड एक्टर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस दौरान मां नरगिस को कैंसर हो गया और फिल्म के प्रीमियर से चार दिन पहले यानी 3 मई 1981 को नरगिस जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात ने संजय दत्त को एकदम तोड़ दिया। हालांकि रॉकी फिल्म हिट हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इसके बाद संजय दत्त ने बहुत सी फिल्मों में काम किया और ज्यादा और सफलता भी मिली। फिर 1986 में फिल्म नाम रिलीज हुई। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग ने इन्हें एक सीरियस और सेंसिटिव एक्टर के रूप में पेश किया। फिल्म नाम में संजय दत्त के बहनोई कुमार गौरव ने भी साथ काम किया। इसके बाद संजय दत्त ने ईमानदार, जीते हैं शान से, इलाका, हम भी इंसान हैं और कानून अपना अपना जैसी हिट फिल्मों में काम किया। पर फिर आया वो दौर जो संजय दत्त के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनके फिल्म साजन का ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज के जो कलाकार हैं वो हैं संजू बाबा। दोस्तों, 90 के दशक में संजय दत्त ने अपने मल्टी टैलेंटेड एक्टिंग का नमूना दर्शकों के सामने पेश किया। फिल्म साजन में इनके रोमांटिक किरदार को खूब पसंद किया गया और इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए अपना पहला नॉमिनेशन भी मिला। फिल्म की स्टोरी सॉन्ग दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म

ने बम्पर कमाई की। इसके बाद फिल्म सड़क भी हिट साबित हुई। फिर सुभाष घई की फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने एक नेगेटिव रोल किया और इस फिल्म ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म में संजय दत्त के बल्लू बलराम के किरदार को आज भी याद किया जाता है। फिर इन्होंने दौड़, कारतूस, खूबसूरत, हसीना मान जाएगी, दाग द फायर और वास्तव जैसी हिट फिल्में दी। इस दौरान संजय दत्त की निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, पर हर बार संजय दत्त ने मजबूती से कमबैक किया। आगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको हम बताएंगे, उससे पहले चलते हैं और सुनते हैं इनके फिल्म सड़क का ये एवरग्रीन सॉन्ग।

0: को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS, लगीरो मुन्ना भाई फिल्म में ना भूलने वाले कॉमिक और इंस्पायरिंग किरदार निभाया। फिर इन्होंने धमाल, डबल धमाल, ऑल द बेस्ट जैसी फिल्मों में दर्शकों को खूब हंसाया। इन्होंने इनकी जो निजी जिंदगी थी वो भी बहुत उतार चढ़ाव वाली थी और आगे हम बात करते हैं इनके अवार्ड्स की। आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडम अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। ये कभी भी स्टीरियोटाइप नहीं रहे। रौबदार अंदाज में बात करना हो या वॉक करना हो या फिर लंबे बालों के साथ जबरदस्त बॉडी, संजय दत्त ने करियर में हमेशा अपने स्वैग से फैंस का दिल जीता। ये वो चुनिंदा सितारों में भी शामिल रहे जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि विलेन बनकर भी दिल जीतने में कामयाब रहे। अग्निपथ का कांचा चीनी, मुसाफिर का बिल्ला, पानीपत का अहमद शाह अब्दाली या फिर KGF चैप्टर 2 का अधीरा, संजय दत्त ने पर्दे में ऐसे कई खतरनाक किरदार में जान डालने का काम किया। आगे भी इनकी बहुत सी अपकमिंग फिल्में आने वाली हैं जिसका दर्शकों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पड़ाव में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे आप सुनेंगे मैटिनी मेलोडीज मेरे साथ यानी राखी बैनर्जी के साथ और मेरे साथ मेरी दोस्त मीना चौहान के साथ।

पुणे में भी 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नश्र होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बाहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। जनूब मगरबी जापान के कुमामोटो इलाके में शदीद जलजला आने से 13 अफराद की जान तलफ हुई है। आज दुनिया भर में शेरों का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज़ की

करते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हला किया जा चुका है। ग्रुप ने अक्वामे मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और बैन अक्वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह आम शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए फौरी मदद करें और इस तरह के वाकयात की आजादाना और गैरजानबदाराना जांच कराई जाए। इसके अलावा इंसानी हकूक से मुतालिक बैन अक्वामी जिम्मेदारियों का पास रखा जाए। इसी दौरान वजारत खारजा ने फिर कहा है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिनमें पाकिस्तान के गैर कानूनी और जबरन अपने कब्जे में लिए गए इलाके भी शामिल हैं, भारत के लाजमी जुज हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वजारत खारजा के हकायक का पता लगाने वाले शोबे ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा खत्ते में इंतखाबात महज पापोती है ताकि खित्ते में इंसानी हकूक की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर से तवज्जो को हटाया जा सके। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब से 10 साल से जारी इकतसादी इस्तेहसाल, इंतजामी जुल्म सितम और बुनियादी हकूक से महरूम किए जाने का बराह रास्त नतीजा है। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतअद्दिद बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाजों में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी बुम्बासा समेत कई बहरी जहाजों पर इस माह आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाजों की बिला रुकावट और आजादाना आमदरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। खबर मिली है कि जनूब मगरबी जापान के कुमामोटो इलाके में शदीद जलजले से 13 अफराद की जानें जाय हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचा है, बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है और शदीद गर्मी की वजह से उन हजारों अफराद के लिए इमदादी कामों में पेचीदगियां पैदा हुई हो रही हैं जिन्होंने पनाह ले रखी है। केशु, शिनकासिन, बुलेट ट्रेन और कुछ हवाई जहाजों की आमदोरफ्त अभी तक मुअत्तल है और नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म सनई टाकायशी ने कहा है कि बुरी तरह मुतासरा इलाकों में इमदादी कोशिशें जारी हैं। इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस जलजले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जापान के आवाम और वहां की सरकार के साथ यकजहती और हिमायत का भी इजहार किया है। वजीर खारजा जयशंकर ने जलजले से मुतासर अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दुनिया भर में शेरों का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज़ करना और उनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वजीर आजम ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हम आहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से उन्हें और ज्यादा तकवीत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निजाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कही। पिछली एक दहाई में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क़यादत में शेरों के तहफ्फुज़ की हसूलियाबियों को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत में शेरों की तादाद 2200 से बढ़कर 3600 हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि शेरों के मस्कन की तादाद 47 से बढ़कर 58 हो गई है। इसी तरह हाथियों के मस्कन की तादाद 28 से बढ़कर 32 जबकि रामसर मकामात की तादाद 26 से बढ़कर 100 हो गई है। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज चंडीगढ़, मशरक मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरला और माही में भी कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है।

सर्विस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे राजा मेहदी अली खां के लिखे कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम पैदाइश के हवाले से। यह आकाशवाणी की

सन 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में राजा मेहदी अली खान और उपनैयर साथ साथ थे और दोनों ने इस फिल्म में बेहतरीन गाने दिए।

0: चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। चांद जर्द जर्द है।
1: राजा मेहदी अली खान और मदन मोहन का सबसे शाहकार काम सन 1962 में आई फिल्म अंतर के जरिए सामने आया। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस फिल्म के गाने और इंडिया रेडियो के जरिए पूरे बड़े सगीर के कानों में रस न घोलते हो।

अब तक के सभी गानों को लता मंगेशकर ने निहायत खूबसूरती से गाया, जैसे है इसी में प्यार की आबरू वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सके तो वही कहें तो मैं क्या करूं।

खुशी तो यही कि राजा मेहदी अली खां की फिल्मी शायरी आब इस दर से लिखी जाने के लायक है। उन्होंने शकील, साहिर और मजरू के उरूज के जमाने में अपने नाम और काम का डंका बजवाया, जो कोई मामूली काम न था।

राजा मेहदी अली खान ने अपनी खूबसूरत गजलों और गीतों से दिलों पर राज किया। उनके बाज गानों का एक एक लफ्ज आज भी लोगों के जहन पर नक्श है।

जमे दिए खां के सुरीले गीतों में बहुत से ऐसे हैं जो हमको बेखुदी और सरशारी के आलम में पहुंचा देते हैं। उनका ये गाना तो आज भी दिलों पर नक्श है।

राजा मेहदी अली खान ने उर्दू नगमा निगारी को एक नया आहंग और दिल फरेबी अदा की। उनके नगमे सदाबहार है, वो आज भी नसीम सुबह की तरह नरम नाजुक और पानी पर बहते चरागों की तरह रोशन है।

राजा मेरी अली खान के गानों में एक गहरी नगमगी अमीर गनायत और दिलफरेबी है। उनके अल्फाज में आबशारों का बहाव और शफक के तमाम रंग दिखने मिलते।

राजा मेरी अली खान ने जो लिखा वो सीधा दिल से निकला और दिल में जज्ब हो गया। आज भी बरसगीर की फजाओं में उनके नगमे गूंजते हैं तो एक अजीब सहर तारी हो जाता है और दिल दिमाग रक्त गुना हो जाते हैं। सन 1962 में आई फिल्म आपकी परछाइयां का ये गाना उनकी एक लाजवाब तख्लीक है।

सन 1946 में आई फिल्म वो कौन थी हमारे इस फिल्मों की फहरिस्त में एक हसीन इजाफा थी। इसकी मौसीकी और इसके गानों में एक जादू था जिसके असर में आज तक हम सब गिरफ्तार हैं।

के और न होने, राजा मेरी अली खां को हजारों लाखों लोगों का महबूब शायर बना दिया। उस जमाने में बड़े बड़े फिल्मी मौसीकार उनके नज़्मों को फिल्म की कामयाबी की जमानत समझते थे।

लड़ाई से राजा मेहदी अली खान फिल्मों से तनावकश होते गए। इस दौरान उन्होंने अपनी मिजाहिया शायरी को सजाने संवारने का काम किया। फिल्म भूमिका में शामिल ये गाना उनके आखिरी गानों में से

राजा में ये लेखा को आम लोग उनकी फिल्मी नगमनिगारी के हवाले से जानते थे। आज भी कई लोग इस बात से वाकिफ हैं कि राजा मेहदी अली खां उर्दू अदब में तंजो मिजाज निगारी के मैदान में एक जमाने में शायर फिल्तन के नाम से मशहूर थे और अपना एक मखसूस अंदाज रखते थे। उर्दू मजाहिया अदब की तारीख में राजा मेहदी अली खां का नाम हमेशा अदब से लिया जाएगा। आमतौर से मजाहिया शायरी

0: उनकी निगरानी में पलते थे। मेरे खालू कहीं न्यूयॉर्क में जेबें कतरते थे, नबे साहिल वो 14 औरतों से इश्क करते थे। चाचा मेरे बहुत मशहूर थे, सबने रिजालत में मुकदमा हार कर नंगे वो नाचे थे अदालत में।
1: राजा मेहदी अली खान ने साफ सुथरे अंदाज की मौसिल मिजाहिया शायरी की है। मशहूर शायर मीरा जी शायरी के अलावा अदारे फन को जांचने परखने और समझने समझाने का काम बहसियत नक्कात करते थे, ताकि अच्छे बुरे अदब में तमीज की जा सके। मीरा जी ने राजा मेहदी अली खान के मजमूए मिजराब के दिबाचे में हिजू गोई और मिजा निगारी के फर्क को वाजे किया है। मीरा जी लिखते हैं,
0: राजा मेहदी अली खान के मजमूए का मुताला भी पहली नजर में जाहिर कर देता है कि इस शायर की जहानत के भी दो नुमाया पहलू है। एक रोमानी पहलू जिसमें मोहब्बत और जवानी की मीठी बातें हैं, और दूसरा हकीकत परस्त पहलू जो बाज सामाजिक खराबियों को दूर करने के लिए कमजो तजहीक के निश्तर चलाता है। लेकिन फनकार यानी राजा मेहदी अली खां की तबीयत में ये दोहरी नशोनुमा क्यों कर मुमकिन हुई? बात यह है कि बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है उसका शऊर भी गहरा और वसी होता रहता है, और वो अपने बचपन की दुनिया को मिटते देखता है और इसलिए जवानी के असरात से अपनी एक नई दुनिया बसा लेता है। ये दुनिया मोहब्बत की रूमानी दुनिया होती है, लेकिन उम्र के साथ एक दिन ऐसा आता है कि ये दुनिया भी मिटती दिखाई देती है। उस वक्त इंसान जिंदगी के अमली पहलू से दोचार होता है और हर बात को सही किस्म की ऐनक से देखने लगता है। राजा मेहदी अली खां की रूमानी दुनिया में निगहत यास्मीन का तस्करा है, और नाज़नीने भी कभी चिलमन के पीछे से और कभी चिलमन उठाकर अपनी झलक दिखाती हैं। अपनी जवानी के जज्बे इश्क और मोहब्बत के बारे में शायर का अंदाज़े नजर क्या है, इसे मालूम करने के लिए पहली नज़्म देखिए, मोहब्बत और जवानी। और पहले ही शेर में शायर का फलसफा मोहब्बत मालूम हो जाता है। वो लिखता है, किस लिए फिरता है मूर्ख यूं आवारा गली गली, किस लिए फिरता है मूर्ख यूं आवारा गली गली, सूरतें और भी हैं दुनिया में कुछ ऐसी ही भली भली।

जुलाई सन 1996 को मुंबई में राजा मेहदी अली खान ने दाई अजल को लबैक कहा और बहन की खाक में हमेशा हमेशा के लिए

जुहन ने दास्तां उनकी सुनाई। अगर आप राजा मेहदीअली खां की शख्सियत खिदमात के हवाले से मुस्तजाबुद्दीन मलिक की तहरीर करदा फीचर के ये दूसरा और आखिरी हिस्सा सुन रहे थे।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में आप सुन रहे थे, ये नगमा फिल्म थी आए दिन बहार के। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और आप सुनी आर डी बर्मन की मौसीकी से जय नगमा, आवाज किशोर कुमार की। ये फिल्म है बुढ़ा मिल गया।

हाथ से फुर्सत निकालो अपना समझ के।

परम पाठ पर गईली वर्ष एक तक जब लग मती लेखे न आए राम गति मन में विधा तलक न भावत कुछ दिन फिरली गाये चरावत बनिया गुरु नाम भगवाना उन्हें कह करा साथ पढ़ना अल्प काल में लिखे लगली ते करा बाद खड़कपुर भगली घर पर आके लगली रहे गीत कवित कतहू केहू कहे अर्थ पूंछ पूंछ के सीखी दोहा छंद निज अक्षर लिखी सादी गवना रंग भैले लिखे में पहले भोर पर गईले। गीत बहुत लंबा है पर वक्त दी पाबंदी करके उन्हां दे बारे साकू पता चल दे कि ओ किवें किवें अगू वधे ते उन्हां दा काज भी थिया उन्हां दी गारावी दा नाम मटवा हाई दिखाए ठाकुर एक ऐसी शख्सियत अंज अंज बहुत सारी काबिलियत रखेंदे हन भोजपुरी दे शेक्सपियर दे नां तो मशहूर लोक कलावंत भिखारी ठाकुर भोजपुरी दे हिमायती लोक कलाकार होण दे नाल नाल ओ हिक्के लुंगी कवि गीतकार नाटककार नाट्य निर्देशक लोक संगीतकार ते अभिनेता हन रंगकर्मी लोक जागरण दा सनिया देवण आले त्रिपुरा दे हक्का दे हिमायती दलित गरीबां लोगे किते अपने दिल विच हमदर्दी रखण आले अपनी गाल जोरदार तरीके नाल रखण आले लोक गीत ते भजन कीर्तन दी साधना करण आले साधक भी हन। श्री भिखारी ठाकुर खत्म थी भोजपुरी संस्कृति को नवा जीवन दिता भोजपुरी दे नां ते सस्ता मनोरंजन पेश करन दे सोखे पंद को छोड़ उना एक नवी सोच नाल इको अगे वधाया हुआ ये परंपरा भी उत्ती पुरानी है जित्ती भोजपुरी दा इतिहास उना दी मां बोली भोजपुरी हाई ते उना भोजपुरी को ही अपने काव्य ते नाटक दी जुबान बनाया उना भोजपुरी संस्कृति को सामाजिक सरोकारा दे नाल इंझा पिरोया कि अभिव्यक्ति दी एक धारा भिखारी शैली दे नाल तों ही सड़ी बन लग पई आदि सामाजिक बुराइयां ते चोट करण कीते एक मजबूत मंच बन के बहुत सारी झाई ते भिखारी ठाकुर दे नाटकां दी गूंज सुनिंदी है हुण वाले त्रिमतियां को नाटकां विच हिस्सा गिनण दी इजाजत कहना आई हे करके उना एक इंझा काम कीता के बिहार विच लोंडे नाच दे नां तों इक इंझा नचण दा अंदाज जिंदे विच इक छुअर छुअर बन के नचदे उन्हां दे नाटकां दा हिस्सा बना ओह नाच पूरे बिहार विच बहुत मशहूर थी गया ओह रोजगार दी तलाश विच अपना गांव छोड़ के खड़गपुर आ गए उत्थां उन्हां बहुत पैसा कमाया पर ओह अपने काम तों खुश कहना हन रामलीला विच उन्हां दा दिल रम गया हाई पर ओह बहुत कुछ ब्याह अंज करना चाहते हैं रामलीला विच बेशक उन्हां दा दिल रम गया है पर ओ बया कुछ अंज करना चाहते हैं हिंदे बाद ओ जगन्नाथपुरी आ गए अपने गांव तो आके उन्हां एक नचण वाली टोली बनाई ते रामलीला खेडन लग पिए ओ नाल नाल गावन भी गांदे हन ते समाजिक कम्मे कारां विच भी जुड़ गए हिंदे अलावा उन्हां नाटक गीत ते किताबां लिखना शुरू कर दिता उन्हां दी किताबां दी भाषा बहुत सौखी ते सिद्धी आई जिंदे करके लोगे उन्हां दी लिखत को बहुत पसंद कीता उन्हां दी लिखी किताबां वाराणसी हावड़ा ते छपरा तों छपी गई उन्हां दी लिखी हुई किताबें दा नां इवें ने हन विदेशिया भाई विरोध बेटी बेचवा कलयुग प्रेम गब्बर गिचोर गंगा स्नान विधवा बलाप शिव विवाह भजन कीर्तन रामलीला गान कृष्ण माता भक्ति ते बई होर बहुत सारी किताबां हन। श्री भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा ते संस्कृति दा वड्डा झंडा बरदार मन्या वेंदे भोजपुरी भाषा झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बंगाल दे कुछ हिस्सा समेत बिहार दे खास हिस्सा विच बोली वेंदी है ए सिर्फ हिंदी भाषाई क्षेत्र विच ही पसंद कहनी कीती वेंदी बल्कि उना शहर च भी जित्थों बिहारी मजदूर अपनी रोजी रोटी किते चले गए हन उत्थों भी अलाई वेंदी है कई लोगे अपने सामंत और ब्राह्मणवादी मुल्ला को कायम रखने कीते उना दी आलोचना कीती जो कुछ हद तक सच थी सकदे अपने कमे विच कुछ ब्राह्मण ते सामंती मुल्ला दी हिमायत दे बावजूद उना हमेशा बराबरी ते समतावादी समाज दी नजर आली पहल कीती है साकू इवें समझना चाहिदे ब्राह्मणवादी मुल्ला दे इना कम अकली बेमतलब दे परछावे दे तहत समतावादी समाज दी कोई भी कल्पना कहनी थी सकती हालांकि उना दे नाटक गुंदे वे ते गामा दे उना दे समाज दे चुबिरदे वड्डे फले ते हाले भी कोलकाता पटना बनारस ते बहे निक्के वड्डे शहरां विच बहु मशहूर हैं जित्थे जित्थे मजदूर ते गरीब अपने रोजी रोटी दी तलाश विच गए होए हैं

manastho manam gulam ali hazar jaan gi

बूहे आगे पहरा देखो है रजपाली, सब दे दर्द मंडावे खुशियां झोली पावे, पुल दे भाग जगावे परचम।

तेरा नाम सच्चा सच्ची जात है तेरी जर तो महताब बना दे लालन हस्ती मेरी तू सच्चा तेरा नाम सच्चा सच्ची जात है तेरी जर तो महताब बना दे लालन हस्ती मेरी जदों की ताज़ी कर कलंदर दा जदों की ताज़ी कर कलंदर दा मेरी हर एक मुश्किल टली टली मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच वसदा

मोतियानल तेरे कदम दे हीरे मोतियानल रवे दिल दी झोली भरी भरी मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच वसदा लाल सखी लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल नखाबन मेरे अंदर एक गल है चंगी ऐसा माए जिंदरी मैं ते लाल सखी लई मंगी नखाबन मेरे अंदर एक गल है चंगी

सदका शाहिद आलम दा मैं खाली हाथ न जावा देरा ते हस बैन अली दा रोर वास्ता पावा सदका शाहिद आलम दा मैं खाली हाथ न जावा देरा ते हस बैन अली दा रोर वास्ता पावा रोंदे रोंदे ना मर जावा रोंदे रोंदे

Come on.

ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੰਗਾਲ ਗੋਰੀਏ।

ਲੁੱਟੀ

चाहिए है, क्योंकि हर किसी को ऐसा हमराज नहीं मिलता। प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी फिल्म म्यूजिक, तो अगला गीत सुन रहे हैं महेंद्र कपूर ते आशा भोंसले की आवाज़ दे विच।

Hey, hey, hey.

Hey, hey, hey, hey.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

150 से 43.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, अटल बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम दे 6:30 बज चुके ने, आओ सुनदे हां देहाती प्रोग्राम।

सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion,
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन बहनों को राजेश और अश्विनी का
2: राम राम।
1: तो अश्विनी भाई, आज कार्यक्रम में भाइयों को उपदेश सुनाएंगे, कल के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, साथ में कुछ ज्ञान की बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि समाचार दर्शन से। ये रिपोर्ट संध्या गुप्ता की है, तो आइए सबसे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं।
3: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में स्टीविया की खेती, प्रसंस्करण और विपणन करने वाले किसान मित्र अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
4: मेरा नाम आशीष तिवारी है, मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टीविया की खेती करता हूँ उधम सिंह नगर जिले में। ये थोड़ा सा तराई में यहाँ गिना जाता है। यहाँ स्टीविया की खेती करने के लिए पौध की अवेलेबिलिटी और की किस तरीके से करनी है, ये सबका गाइडेंस हमें जानकारों से मिला, जिनमें कुछ लोग पुणे से और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों के ही थ्रू हमें शुरुआत में स्टीविया की पौध मिली और हमने स्टीविया का 3 एकड़ में खेती करी है। स्टीविया में जो साइज होता है वो, मतलब जब वो फुल ग्रोन पूरा बना हुआ पौधा होता है, उस समय उसका जो साइज होता है वो लगभग 1 से 2 फीट की कैनोपी होती है उसकी। तो इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो इसके पत्ते की भी है और कुछ इस चूड़ा निकल जाता है उसकी भी रहती है। जो इसमें जो 2 कंटेंट हैं स्टीविया की खेती करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके साइंटिफिक नेम में भी यूज होते हैं, जो कि जिसको स्टीविया रिबॉडियाना कहा जाता है। तो स्टीवियोसाइड और रिबॉडिसाइड, ये 2 कंटेंट मिलके इसमें मिठास लाते हैं इसके पत्ते में। लगभग एक बार लगाने के बाद 5 साल तक आपको उपज देती है और हर 3 महीने में ये उपज देती है। और ये पत्ते जब पूरे तैयार हो जाते हैं तो उनका साइज लगभग 3 इंच से 4 इंच के बीच में रहता है। इसकी उसमें समस्या भी आती है, वो फ्लावरिंग को लेके होती है कि कब इसमें फूल आ जाएगा। तो फूल आने के लिए क्या होता है कि ये किसी भी मौसम में, मतलब पत्तियां बढ़ती हैं जब आप

0: पत्तियों को लेकर ही करी, और पत्तियों की मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। अगर मैं आपको रिटेल में बताऊं, लगभग लगभग 3,000 रुपए किलो से 5,000 रुपए किलो तक आराम से चली जाती हैं फुटकर में, मतलब छोटे छोटे पैकेट बना के जब हम इसको इसकी सूखी पत्तियों को बेचते हैं। थोक में जो डिमांड है वो डिमांड भी ठीक ठाक रहती है। अगर आपकी पत्तियां साबुत हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं और साइज में अच्छी हैं तो वो पत्तियां लगभग लगभग 300 से 400 रुपए किलो मार्केट में चली जाती हैं। तो फ्लेवर चाय को थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देने के लिए और उसको सेहतमंद रहते देने के लिए भी स्टीविया को की मिक्सिंग करी जाती है। कि सबसे अच्छी चीज है कि इसको पशु चरते नहीं है, पशुओं से इसकी देखभाल करने की खास आवश्यकता नहीं होती है। हर चौथे महीने में आप फसल ले सकते हैं, अच्छे पत्तों वाली जो चमकदार पत्ते जिसमें हो रहे हैं वो वाली फसल अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है जो इसकी थोड़ी सी लागत बढ़ाती है। धूप में भी सुखाया जा सकता है, छाया में भी सुखाया जा सकता है। जिस दिन फसल कटती है आपको उसी दिन सुखाना होता है, आप इसको बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकते कि अगर आपने इसका ढेर बना के काट के रख दिया तो कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से सड़ जाता है। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आपको इसकी उपज लेनी होती है, जब सुखाने के लिए आपके पास जगह भी तैयार हो और आपको पता हो कि धूप टेम्परेचर का अच्छा लेवल है और बारिश नहीं आ रही है, उस समय आप इससे उपज इसकी ले सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करना भी आसान है, आप जड़ से बस 2 इंच 3 इंच का ठूंठ छोड़ के आप इसको पूरा का पूरा पौधा काट सकते हैं, फर्टिलाइजर डालेंगे तो उसके बाद ये पौधा फिर से तैयार हो जाता है अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। वातावरण में नमी ज्यादा होती है और उमस होता है उस समय इसकी फसल ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उस समय एक दूसरी परेशानी है कि इस पौधे में कहीं पे भी पानी रुकने की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसकी जड़ में जरूरत से ज्यादा पानी जाता है सड़ जाता है और पौधा खराब होने लगता है। पौधे से पौधा बनाने का और तरीके भी होते हैं कि आप एक पौधे के नीचे जड़ के साइड से कई कल्ले फूटते रहते हैं तो कई बार वो अपने आप में एक पूरा मदर प्लांट बना देते हैं। हर फसल लेने के बाद आपको गोबर जड़ में डालना होता है, सामान्य इसकी सिंचाई करनी होती है। अगर इस्तेमाल करा जा सके तो ड्रिप इरिगेशन सर्वोत्तम रहता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, पौधे में बहुत ज्यादा कीट पतंगे की समस्या भी नहीं रहती है, न इसकी जड़ में कीट पतंगे की समस्या रहती है, न इसके पत्ते में कीट पतंगे की समस्या रहती है। तो उससे भी ये काफी अच्छा पौधा है, कीटनाशक के रूप में बहुत खर्चा उठाने की जरूरत नहीं होती है। सरकार इसको मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है, तो सरकार इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की भी सहायता देती है और पौधे उनके लिए भी सहायता देती है कि कई किस्में होती हैं। कुछ किस्म, मतलब ये किस्में किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ कि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो उस वातावरण में चलती हैं जिसमें सर्दियों में तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाता है, क्योंकि उस समय फिर उसके पौधा जमने लगता है। जो भारत में मौजूद वैरायटीज हैं वो भारत में ही डेवलप करी गई हैं, तो बहुत ज्यादा उनमें वेरिएशन नहीं है। आप एक सामान्य कोई भी वैरायटी लगाएंगे तो भारत के टेम्परेचर के हिसाब से सामान्य ही रहता है।
1: सभी कृषकगणों को मेरा संजय कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। मैं पिछले 6-7 वर्षों से कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ा हूं। जुड़ाव तो पहले से था लेकिन कुछ आधुनिक और जिस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हमने कार्य करा है, जिसमें एक हमारा बहुत ही उपयोगी फसल जो निकल के सामने आया है वो है स्टीविया। स्टीविया की खेती हमने कुछ 6-7 सालों से बहुत सारे किसानों के साथ मिलकर करा है और स्टीविया की उत्पत्ति थी तो पहले से, लेकिन लोगों का रुझान उस तरफ तब बढ़ा जब हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित होने लगे, उसके बाद लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ा। मीठी तुलसी भी कहते हैं। स्टीविया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नेचुरल स्वीटनर का काम करता है। इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती। चाय बनाने में उसकी पत्तियों को यूज कर सकते हैं या उसके पाउडर को यूज कर सकते हैं या उससे रैफ बनाया जाता है। उस रैफ को आज के दिन में बहुत सारी मिठाई दुकानों में भी आप देखते होंगे कि शुगर फ्री मिठाइयां मिलती हैं जिनके अंदर उनके एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है। हम लोगों ने किसानों में जागरूकता फैलाई कि ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, फिर हमने उसके कुछ प्रोडक्ट भी बना के आगे मार्केट में सेल करा। स्टीविया जस्ट लाइक अगर तुलसी के पौधों के देखे तो वैसा ही पौधा होता है। व्यावसायिक खेती के रूप में अगर आप देखें तो एक स्टीविया के पौधे को हम ऐसा नहीं है कि उसकी जो हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई जो होती है वो एक बार में पूरी की पूरी फिनिश नहीं हो जाती। उसको एक पौधे को अगर हम क्यारी बना के उस पर मल्च

0: सीट लगा के और एक एक फीट के डिस्टेंस पे अगर स्टीविया के पौधों को हम लगाएं, लगाने से पहले, क्यारी बनाने से पहले उसके अंदर में जो नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद है, गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है, उस खाद को मिला के फिर उसकी क्यारी तैयार करके, तैयार करने के बाद ऊपर से अगर मल्चिंग सीट बिछा दें तो उससे क्या फायदा होता है कि उसमें उसकी नमी बनी रह जाती है। जैसे आप एक बार अगर क्यारी के अंदर पानी डाल दिए तो वो नमी उन पौधों को एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 दिनों तक नमी उसकी बरकरार रहेगी और पत्तियों का विकास अच्छी तरह से हो सकेगा। उपयोग तो उनके डंठलों का भी होता है लेकिन ज्यादा उपयोग उनके पत्तियों का होता है, इसलिए पत्तियों को अच्छे रूप देने के लिए, बड़ी पत्तियां आने के लिए मिट्टी में नमी है वो रेगुलर बनी रहनी चाहिए, इसलिए मल्चिंग सीट बिछा के उसकी खेती की जाती है। और खेती करने के बाद 3 महीने के अंतराल पे इस पौधे से पत्तियों की कटाई की जाती है। पत्तियों को कटाई करने के बाद उसको इधर सोलर ड्रायर के अंदर या फिर ग्रीन नेट हाउस के अंदर पत्तियों को सुखाया जाता है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाया जाता कि पत्तियां पीले पड़ जाएंगे, ग्रीन नेट के अंदर उन पत्तियों को सुखाया जाता है। सूखने के बाद जब पत्तियां हरे रूप में ही सूख जाती हैं फिर उनको पाउडर बनाया जाता है, फिर उन पाउडर को हम उपयोग ले सकते हैं। अगर कोई हमारे किसान या घर के किचन गार्डन के अंदर भी कुछ लोग अगर उगा रखे हैं तो उनको डायरेक्ट भी पत्तियों को आप लेके, अगर आप पत्तियों को सीधा भी खा के देखें तो वो मीठा ही लगता है। तो आप अगर चाय बना रहे हैं तो उसमें चाय में डायरेक्ट ग्रीन पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं, या ग्रीन हरी सूखी पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं, या उसके पाउडर को भी यूज कर सकते हैं। और आज के दिन में अगर इस स्टीविया की खेती विदेश में, हमने इसकी ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग और बीज की उपलब्धता हमने मॉरिशस में भी कराई, घाना में कराई, वियतनाम में कराया है, हमारे एक दो मित्र हैं जिन्होंने वियतनाम में जाके, भूटान में जाके वहां किसानों को ट्रेनिंग भी दिया है वहां के सरकार के सहयोग से, विदेशों में भी इसकी बहुत ही डिमांड आने लगी है। अगर हम अपने देश भारत के अंदर की खेती पे नजर डालें, कम से कम 300 से 400 हेक्टेयर लैंड पे इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है, हमारे किसान कर रहे हैं। स्टीविया हमारा आज के दिन में हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है, किसान जनों को प्रेरित करते हैं इसकी खेती करने के लिए और इसके उत्पाद को आगे से आगे मार्केट में पहुंचाने के लिए। एक एकड़ की खेती की अगर गणना करें तो एक एकड़ के अंदर कुल लागत जो है वो 60 से 80 हजार रुपए की लागत इसमें आती है। एक पौधे को हम एक साल के लिए लगाते हैं, उससे ज्यादा दिनों तक भी ये पौधा रह सकता है बशर्ते कि जमीन और सिंचाई उसके अनुकूल हुआ तो। उसे 3-3 महीने पे हम उसकी हार्वेस्टिंग करते, 60 से 80 हजार रुपए जमीन बनाने और बीज लगाने, पौधों को लगाने में खर्च आती है। और खर्च करने के बाद जो साल के अंदर 4 बार, 3-3 महीने पे 4 बार जब इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें पर हार्वेस्टिंग जो हमारी इनकम आती है तो उसको अगर एवरेज भी रही तो 30 से 35 हजार होगी, और अगर अच्छी पत्तियां निकल आई तो 40 से 50 हजार तक की पत्तियां होती है। तो अगर 4 बार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं 70 से 80 हजार लागत में से 1,60,000 रुपए की रिटर्न उससे हमें मिल जाती है पूरे साल के अंदर। बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर में इनकी पत्तियों का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए लास्ट जो ठंड के दिनों का जो हार्वेस्टिंग होता है उसकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है, बशर्ते बाकी 3 हार्वेस्टिंग जो है पूरे साल में इसकी अच्छी तरह से हो जाती है।
1: नमस्कार, मेरा नाम रजिया खातून है, मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करती हूँ। लगभग 15 से 18 साल हो गए हैं हम लोग जड़ी बूटियों वगैरह की खेती। स्टीविया है, मीठी तुलसी बोला जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो बेहतर एक चीज होती है मिट्टी, दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा इसके लिए बेहतर होती है, क्योंकि ऐसा होता है स्टीविया जब हम लगाते हैं ढलान वाली जगह जो होती है जिससे पानी बह जाता है, पानी अगर हम लगा रहे हैं तो उस जगह पे पानी रुकना नहीं चाहिए, कम से कम पानी रहेगा तो उसमें ज्यादा अच्छे से वो ग्रोथ करेगा। जब इसको हम तैयार करते हैं, जब ये तैयार हो जाता है तो इसको हम हर 3 महीने के बाद इसको हम काट सकते हैं, साल में 4 बार इसकी हम कटाई कर सकते हैं। ये 2-3 महीने छोड़ के हम कभी भी लगा सकते हैं, दिसंबर, जनवरी और 1 फरवरी। लगाने के हर 3 महीने के बाद हम इसको काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका पौधा होता है

0: उसी को हम लगाते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उसको लगा लेते हैं, नहीं होता तो मंगवा लेते हैं। सीवियर के लिए बहुत बेहतर है। एक साल में मैक्सिमम 3 से 4 लाख के आसपास, क्योंकि इसमें 4 कटान होते हैं, इसके हर 3 महीने के बाद इसको काटा जाता है। कटान करने के लिए लोगों को रख रखा है। सीविया जब हम उसको काटे तो हमारी जो जमीन होती है उसमें नमी ना हो, क्योंकि जब उसमें नमी होगी तो पौधे में भी फिर नमी होगी। उसको काट के छोड़ देंगे फिर वो अच्छे से सूख जाएगा। सीविया को स्टोर करने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर नमी ना हो, धूप जैसे गर्माहट सी चीज ये खराब ना हो, जैसे जानवर इसको नहीं खाते हैं। व्यापारी हमारे घर आते हैं, सीविया ले जाते हैं, और जैसे नहीं कोई आ पाता है तो हम खुद से उसको प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैम ये शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है सीविया को, भी मतलब सलाह देते हैं किसान लोगों को। मैं बहुत से लोग कर रहे हैं सीविया को, पाउडर वगैरह भी बनता है ज्यादातर सीविया की, जो है इसकी पत्ती ही जाती है।
1: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक संपन्न होता है। मैं संध्या, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिव नंदन लाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो अश्विनी, देखिए, इस दुनिया में जब आप आए हैं तो उसमें सत्य कर्म के साथ में जरूरी है कि आप सम्मान करें, आदर करें, और गुरुओं का ही नहीं अपने माता पिता का भी, वही सम्मान वही सेवा। और ये आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, वैसे ही करेंगे। तो एक ऐसे ही उपदेश सुनाते हैं संत लाल से।

0: तने महल के काया रे। तो ये मूर्ख बंदे कर ले सेवा, ये आप सुन रहे थे उपदेश संतलाल से।
1: जी
0: और देखिए, सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है जिसका हमारे किसान भाई खूब फायदा उठा रहे हैं, ले रहे हैं और कृषि कार्य में उसका जमकर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं योजनाओं में से एक है किसान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
1: जी
0: तो अश्विनी, किसानों के लिए केंद्र सरकार की ये एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है।
1: जी
0: इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एक तरीके से कह सकते हैं ये PMKMY
1: जी
0: यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा इससे मिलती है। और इसकी शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो एनडीए गवर्नमेंट है, 12 सितंबर 2019 को हुई। ये 18 से 40 वर्ष आयु के पात्र किसानों के लिए है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। किसानों को आयु के अनुसार 55 से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक अंशदान करना होता है। और किसान जितना अंशदान करता है उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी करती है। योजना छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों के लिए बनाई गई है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पात्र जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।
1: जी देखिए जी
0: इसका
1: आप देखिए राजेश भाई भाई, आज हमें इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि हम बात कर रहे हैं मानधन योजना की, जिसमें जो किसान वर्तमान ही नहीं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास भी करता है। हम सभी जानते हैं कि किसान पूरी जिंदगी खेत में मेहनत करना करता है, देश के अन्नदाता को बनकर करोड़ों लोगों का पेट भी भरता है, लेकिन जब उम्र ढलने लगती है और काम करने की क्षमता किसान की कम हो जाती है, तब नियमित आय का कोई ना कोई साधन जरूर होता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री मानधन योजना। देखिए, बाकी राजेश जी ने
0: बिल्कुल
1: हमें हमें लगातार बता भी रहे हैं, मेरा मकसद यही था कि हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी।
0: बिल्कुल। और दूसरा अश्विनी, मैं अपने किसान भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा कि जिन किसानों ने जो
1: जी
0: मेड बनाकर अगर पानी की निकासी है तो उसको रोकें। साथ में इस वक्त जो मौसम, जो कृषि वैज्ञानिक है उनके हिसाब से जो काम है वो करें। किसानों को सलाह है कि वो बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य करें। और इसके साथ ही अब कार्यक्रम को जो है वो
1: घड़ियों की
0: समापन।
1: सुई लगातार कह रही हैं कि भाई अब कृषि दिवस कार्यक्रम का यहीं समापन होने जा रहा है, लेकिन बातें हमारे पास बहुत थी करने के लिए। मन तो नहीं कर रहा विदा लेने का, लेकिन फिर भी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।
0: राम
1: और
0: राम। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कुछ गजलों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: पंखा का खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी। राज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक नियमों को कम करने और शासन व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इस दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
4: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी काम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का पारित होना करोड़ों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के विश्वास को और सशक्त करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत की परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान

0: वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से लेकर 11 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में अनावश्यक नियमों को कम करने और कामकाज को आसान बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को प्रभावी ढंग से लागू करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कारण हुई देरी के बावजूद वर्तमान सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में जानकारी दी गई कि सुधार अभियान के पहले चरण में चिन्हित 23 प्राथमिक क्षेत्रों में से 13 का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है, जबकि 4 सुधार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अप्रासंगिक हो गए हैं। समीक्षा के दौरान ये भी बताया गया कि सुधार अभियान के दूसरे चरण में जून महीने के मध्य तक लागू 3 प्राथमिक क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इनमें दिल्ली नगर निगम की दोहरी व्यापार लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों को उद्धार बनाना और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करना जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के मसौदे पर हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सर्टिफिकेट में दाहिने ट्रिगर्स के सामने एक कटा हुआ घाव दर्ज है, जिसे हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार यह एक साधारण चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा निष्कर्षों में गोली लगने की आशंका नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है।
2: इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। ये योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वाहन उद्योग के समन्वित प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के NCR जिलों को कवर करता है। भागीदार राज्य पात्र लाभार्थियों को 10 वर्षों के लिए 100% तक मोटर वाहन कर में छूट और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस आयोग की अध्यक्षता सुनीता कांगड़ा के नेतृत्व में की जाएगी। वहीं मनोज कुमार और सुशांत सागर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह पुनर्गठन आयोग की कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा उनके कल्याण के प्रयासों को और प्रभावी बनाएगा। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की मंजूरी के फैसले के बाद आज बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंची और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुमेन लेड डेवलपमेंट के दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।
3: मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमन लेड डेवलपमेंट के मूल मंत्र को दिल्ली में पुनः चरितार्थ करने के लिए एक और योजना सुचारू रूप से शुरू करी है।

0: जिसका नाम है लक्ष्मी योजना। लगभग 17 लाख से ज्यादा महिलाएं इससे लाभार्थी होंगी। दिल्ली की मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण में ये बहुत ही मजबूत पहल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवकों, भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी। अगले 100 सप्ताहों तक प्रत्येक रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने के लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज होलंबी क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने बताया कि ये पहल नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम ने कहा कि ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और दिल्ली के निवासियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए निगम के संकल्प को और मजबूत करती है। दिल्ली सरकार ने आज डॉ अजय कुमार, डॉ हंसराज बवेजा, डॉ एस के टंडन और डॉ विनोद कुमार मोंगा को दिल्ली चिकित्सा परिषद का सदस्य नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये नियुक्तियां परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक राजधानी में सुचारू आवाजाही और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। इस अवधि के दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं।
2: यातायात पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। यातायात पुलिस ने बताया कि वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, GT रोड और उनसे जुड़े मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही को सीमित किया जा सकता है या दूसरे मार्ग पर मोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुष्ता रोड, आशाराम त्यागी मार्ग और लोनी रोड सहित कई प्रमुख चौराहों पर भी यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। यातायात पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सड़क के किनारे अपने वाहन खड़ा न करने की सलाह दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: देशभर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मंदिर मार्ग स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की उन महान परंपराओं का पर्व है जो हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
0: जीवन में गुरु धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं गुरु पूर्णिमा की, और गुरु के सानिध्य में ही हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता है, दिल्ली को विकसित करने का रास्ता है और भारत को आगे ले जाने का है।
1: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्लॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में युवाओं के साथ पूजा अर्चना की। श्री खंडेलवाल ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं है बल्कि ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्मरण करने का भी दिवस है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बात कर असम में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा ने अनगिनत लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। श्रीमती गुप्ता ने राहत और बचाव कार्यों में असम सरकार द्वारा किए जा रहे समर्पित और सतत प्रयासों की सराहना की। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति

बीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक नियमों को कम करने और शासन व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इस दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीन वेद वेदांत संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भेंटकर्ता नीलम मलकानिया।
1: गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, क्या प्रासंगिकता है आज के डिजिटल युग में गुरु पूर्णिमा की, ये सब हम समझेंगे। इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी को। आप डीन हैं वेद वेदांत संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर देवी प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रोफेसर देवी प्रसाद, आप बताएं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है।
2: भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सबसे उन्नत जगह पर है और वेदों का, भारतीय परंपरा में वेदों का उद्देश्य है या वेदों का अध्ययन है। वेदों का अध्ययन ही इसलिए किया जाता है कि वो एक गुरु के स्थान पर जो वेद का अध्ययन करता है उसको पूरे ज्ञान का उत्सव कहा गया है। पूरे भारतीय ज्ञान का जो एक स्रोत है वह वेद है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को चार भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। वेद व्यास जी की जो जन्म तिथि है उसको ही आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है और आषाढ़ पूर्णिमा को ही व्यास जयंती, व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आदिकाल से जो गुरुकुल हैं, जो गुरुकुलीय व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था में आषाढ़ पूर्णिमा को प्रत्येक गुरुकुल में वेद व्यास जी का पूजन, वेदों का पूजन, ज्ञान का पूजन। वेदों का पूजन का अभिप्राय है विद ज्ञाने धातु से, वेद ज्ञान है, और प्रत्येक गुरुकुल में ज्ञान की पूजा होती थी और प्रत्येक गुरुकुल में गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजन, वेद की पूजा के रूप में इस पूरे उत्सव को मनाया जाता था।
1: जी,
2: आज भी बहुत से गुरुकुल ऐसे हैं जहां पर वेद व्यास जी का पूजन होता है, वेदों का पूजन होता है और भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। यही उत्सव आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है। वेद व्यास जी एक ऐसे आचार्य हैं, एक ऐसे महर्षि हैं जो चिरंजीवी हैं, जो सात हमारे चिरंजीवी हैं, उन सात चिरंजीवियों में वेद व्यास जी भी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्ते ते चिरजीविनः। ये सात चिरंजीवी हैं, उसमें ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है, ज्ञान के रूप में जिनकी पूजा होती है और जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, एक वैदिक संस्कृति को एक नया आयाम दिया, इसलिए वहां पर वेद व्यास जी का पूजन होता है।
1: प्रोफेसर देवी प्रसाद, आमतौर पर हम ऐसा मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जिन्हें भी हम अपना गुरु मानते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सही तरीका क्या है गुरु पूर्णिमा मनाने का और हम ऐसा कैसा आचरण रखें, हम क्या करें, विधि विधान में क्या इसके नियम है ताकि हम अधिकतम लाभ गुरु पूर्णिमा का ले पाएं।
2: गुरु किसी भी व्यक्ति को अगर मिल जाए तो उसके जीवन का जो नया रास्ता है या जीवन ही सुधर जाता है, जीवन में पूर्ण सुधार आ जाता है यदि उसको कोई अच्छा गुरु मिल जाता है। कई दृष्टियों से अगर हम इस प्रकार की बात को करते हैं, आज गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है। आज हम विश्वविद्यालयों में हो चाहे महाविद्यालयों में हो, आज गुरु को कम कहा गया है, परंतु जो गुरु है, जो व्यक्ति को, व्यक्ति के जीवन को संवारता है, उसको बनाता है, उसको सही मार्ग पर ले जाता है, तो सही मार्ग दिखाना, सही समाज में सही रूप से व्यवस्थित करना और उस व्यक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि समाज में उसकी मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, गुरु का भी सम्मान बढ़े। परंतु गुरु का एक मुख्य उद्देश्य ये नहीं रहता है कि मेरा सम्मान बढ़े, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का उद्धार हो, यह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो और यह समाज में अपने कार्य में सबसे उन्नत स्थिति पर रहे, इसीलिए वहाँ गुरु का सम्मान है। और गुरु भी यह चाहता है कि जब उसका शिष्य आगे बढ़े तो उसको सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। भारतीय संस्कृति में यही कहा गया है कि सर्वत्रम विजयम इच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम। एक पिता और एक गुरु, पिता अपने पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है, उसी प्रकार समाज में एक गुरु जो होता है वह अपने शिष्य को अपने से आगे देखना चाहता है। जिस दिन उसका शिष्य उससे आगे निकल जाता है, जिस दिन उसका पुत्र उससे आगे निकल जाता है, उस दिन वह सबसे ज्यादा उसको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि आज मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल गया है, अर्थात मैं सबसे ज्यादा सफल गुरु हूँ। गुरु पूर्णिमा पर पूजन कैसे करना चाहिए? हर व्यक्ति अपने गुरु का स्मरण करे। गुरु के कई प्रकार हैं। एक तो हमारा जो शिक्षा गुरु है कुछ यहाँ पे दीक्षा गुरु हैं। आजकल दीक्षा गुरुओं का ज्यादा प्रचलन रह गया है, जिससे हम कोई दीक्षा लेते हैं, जिनसे हम कोई मंत्र लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए कोई रास्ता लेते हैं, उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं, अपने कार्य में हम सफल होते हैं, उन गुरुओं की वंदना करना, उनका स्मरण करना, उनका पूजन करना और उनको जाकर के उनसे मिलना। आज वेद व्यास जी की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि वेद व्यास जी आज भी इसमें, क्योंकि वह चिरंजीवी हैं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी को वेद व्यास जी ने दर्शन दिए, वेद व्यास जी उनसे मिले और उनको नया रास्ता दिखाया। जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की बात आई थी तो वेद व्यास जी उनसे मिले। हमारे गुरुओं की जो एक परंपरा है वह मात्र अध्ययन कराने से ही गुरु नहीं होता है, गुरु अपने आचरण से होता है। यदि गुरु का आचरण बहुत सभ्य है, गुरु का आचरण आदरणीय है, गुरु का आचरण पूजनीय है, तो आचरण की जो एक शिक्षा समाज में जाती है वह सबसे बड़ी शिक्षा है। आचरण से ही ज्ञान दिया जाता है। भारतीय परंपरा में गुरु की स्थिति बहुत ही उन्नत है। हमारे यहाँ तक कहा गया है, बट तोर मूरे विद्या शिष्य गुरु युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। एक बट वृक्ष के नीचे गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं, उसमें उनका गुरु जो है युवा है और जो शिष्य है वो वृद्ध है, परंतु गुरु का जो व्याख्यान हो रहा है वो मौन है, मौन व्याख्यान दे रहे हैं, परंतु उस मौन व्याख्यान में भी जो उनके शिष्य है उनका सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और व्याख्यान मौन चल रहा है। ये भारतीय परंपरा का गुरु है जो मौन होते हुए भी अपने शिष्यों को बहुत बड़ी शिक्षा देता है, वह शिष्य अपने ज्ञान में मुक्त हो जाते हैं। तो अगर जिस दिन गुरु चाह ले, जिस दिन गुरु की व्यवस्था बन जाए, तो अपने शिष्य को बहुत ही उन्नत स्थिति पर वह पहुंचाता है।
1: आपसे हमने ये जाना कि अगर श्रद्धा हो, लग्न हो और परिश्रम किया जाए, साधना की जाए, तो स्वयं वेद व्यास जी के दर्शन भी पाए जा सकते हैं, जो कि गुरुओं के गुरु हैं। और अपने गुरुओं का मान तो हमेशा रखना ही चाहिए। गुरु से ज्ञान पाने की बहुत सारी विधियां होती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो विद्यालय शिक्षा में हमारे शिक्षक होते हैं वही गुरु हैं। क्या शाब्दिक अर्थ को छोड़े तो इनमें कोई भिन्नता है, कोई भेद है?
2: गुरु की जहाँ तक दृष्टि आती है, सबसे पहला गुरु माँ को कहा गया है, क्योंकि माँ सबसे प्रथम गुरु है। बच्चा जब पालने में होता है, बच्चा माँ की गोदी में होता है, तो वहाँ से ही माँ बच्चे को धीरे धीरे धीरे धीरे उसको शिक्षा देना प्रारंभ करती है। उसके बाद पिता उसका गुरु होता है, वह भी उसको शिक्षा देता है। परंतु जब माता और पिता के बाद उसको कुछ और शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, समाज की दृष्टि की आवश्यकता होती है, और माँ पिता से हट करके उसको जब शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, गुरुकुल में भेजा जाता है। उसी प्रकार आज हम माता पिता अपने बच्चे को किसी विद्यालय में उसको अध्ययन के लिए भेजते हैं। वहाँ पर उसका जो गुरु है वो उसके अध्ययन को आगे बढ़ाता है, उसको जो शिक्षा देता है, उसको अक्षर ज्ञान देता है, और उसके बाद धीरे धीरे धीरे वो उसके चरित्र का निर्माण करता है। आप देखिए, एक गुरु के पास बहुत से शिष्य होते हैं, एक कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं, परंतु उन सभी छात्रों को एक ही अध्यापक या एक ही गुरु उनको पढ़ाता है। उसमें

0: और ऐसे गुरु जब तक समाज में रहेंगे धीरे धीरे समाज उन्नति की ओर चलता चला जाएगा।
1: हम मानते हैं कि ज्ञान में पात्रता जो है उसका बहुत महत्व है। शिक्षा अर्जित करने के लिए तो पात्रता पर हमेशा ही ध्यान दिया जाता है कि जो शिष्य है वो कैसे हैं। लेकिन क्या हम गुरु की पात्रता पर भी विचार कर सकते हैं कि उन्हें अपना गुरु मानना चाहिए?
0: पात्रता ज्ञान में है, परंतु उसके जो गुण है आचार्य के, गुरु के जो गुण होने चाहिए, वो ज्ञान की गंभीरता के बजाय यदि उसके आचरण के और उसके गुण यदि ज्यादा अच्छे हैं तो ज्ञान धीरे धीरे वो आ जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है वो हर व्यक्ति में होता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा बिंदु है, अर्थात ज्ञान का दूसरा रूप वेद भी है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका जो अधिकरण है, ज्ञान हमेशा आत्म तत्व में रहता है और आत्म तत्व शरीर में रहता है, तो ज्ञान सभी व्यक्तियों में बराबर होता है। अंतर इतना होता है कि कोई जो ज्ञानी है या जो गुरु है या जो शिष्य है, उन दोनों में धीरे धीरे धीरे धीरे जो सामिप्य बनता है, आपस का जो झिझक है, आपस की जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे जब हटती हैं तो गुरु और शिष्य का एकाकार हो जाता है। जब वो एकाकार होने लगता है तो शिष्य अपने गुरु के पास जब जैसे जैसे एक पुत्र अपने माँ से बहुत करीब होता है, अगर उसी प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के बहुत करीब हो जाता है, तो कभी बहुत दृष्टि से गुरु का जो ज्ञान है वो शिष्य में अपने आप संप्रेरित हो जाता है, और उस संप्रेरित हो जाने के कारण शिष्य भी वहां पर जो कम से कम जानने वाला शिष्य अगर हम यहां कहें बोलने लग जाता है सिर्फ गुरु की कृपा से। ये सामान्यतया हम आज की दृष्टि से इसको कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, परंतु जो एक प्रकार के जो सिद्ध गुरु हैं या जिन गुरु में जिनका गुण बहुत ज्यादा है, ऐसे गुणी जो गुरु हैं जिनमें गुण संपन्नता आचरण संपन्नता बहुत रहती है, उन गुरुओं के द्वारा ज्ञान का संप्रेषण छात्रों में सबसे अधिक होता है। तो जहां गुरु के पास शिक्षा का नॉलेज होना चाहिए, जिसको आप नॉलेज कहते हैं, ज्ञान होना चाहिए, वो बहुत कुछ जानता है, वो भी उसके पास होने चाहिए, परंतु यदि उसमें गुण नहीं है और गुरु का जो गुण होने चाहिए, गुरु के अंदर जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, यदि वो चीजें उसमें नहीं है, तो उसके ज्ञान का संप्रेषण कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, रावण को वेद का ज्ञान था, रावण को बहुत से शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी रावण गुरु नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? रावण का जो आचरण था वो उसके अनुकूल नहीं था। रावण का आचरण उसके अनुकूल न होने के, तो आचरण का मुख्य उद्देश्य आचरण होता है, गुण होते हैं। यदि उसके गुण, उसका आचरण, उसका जो पूरा एक समग्र औरा जो होता है, यदि उसका उस छात्र के अनुकूल है या उस शिष्य के अनुकूल है, तो शिष्य हमेशा ज्ञान में परिपूर्ण होगा ही। बहुत से किस्म के शिष्य होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ने से दूर जाते हैं, पर जिस दिन यदि गुरु चाह लेगा कि मुझे इस शिष्य को ठीक करना है, तो उस दिन वह शिष्य निश्चित रूप में ठीक होगा, क्योंकि गुरु के पास ही वह गुण है और वह गुरु ही जानता है कि मुझे इसे ठीक कैसे करना है।
1: जी,
0: कभी कभी समाज की ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत से अच्छे गुरु भी इस प्रक्रिया में आगे नहीं आ पाते, और वो आगे नहीं आ पाने के कारण वो ये चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। आदिकाल में क्या था, गुरु के आश्रम में शिष्य रहता था, आश्रम में शिष्य रहने के कारण गुरु वहां पर स्वतंत्र होता था अपने शिष्यों को ठीक से व्यवस्थित करने की दृष्टि से। वो धीरे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो लर्नर आज हम उसको कहते हैं, तो स्लो चलना, तीव्र चलना, परंतु अगर गुरु चाहे तो उसको ठीक कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य के संदर्भ में एक बहुत अच्छा ऐसा ही उपाख्यान आता है कि उनके चार शिष्य थे, चार शिष्यों में सारे शिष्य प्रख्यात थे, बहुत अच्छे ज्ञानवान थे, विद्वान थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी हमको पाठ पढ़ाइए, हमको पढ़ना है। तो उनका एक शिष्य जो है कोई काम से, उनकी सेवा के काम से वो तालाब के पास गया था और उनका वस्त्र प्रक्षालन कर रहा था। उनकी उसको भी आने दो, फिर पाठ शुरू करते हैं। और अन्य शिष्यों ने कहा नहीं, उसको आना नाना बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं बात को। परंतु गुरु को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा मेरा एक शिष्य है, बहुत अच्छा है, सेवा करता है, सब कुछ करता है, परंतु उसमें ज्ञान का वो संप्रेषण बहुत जल्दी नहीं होता है। ये तीन जो शेष हैं, इन्होंने सोचा कि हम तो बहुत विद्वान हैं, तो हम शायद ऐसा अहंकार आ गया है कि उसकी आवश्यकता नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये गुरु को जब बात खराब लगी तो उन्होंने तुरंत, जैसे वो शिष्य आया, उन्होंने पूछा तुम कहाँ थे? इतने देरी में गुरु ने अपना पूरा ज्ञान उसको दे दिया, और देने के बाद उसे पूछा तुम कहाँ थे, तो उसने कहा कि हम ऐसे ऐसे, और वो सारी विद्या, जो सारी चीजें उसने

0: अपने त्रोटक छंद में बताई, बाद में आकर के वही त्रोटक आचार्य हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि व्यक्ति को कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो निश्चित है कि उसके जीवन का कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा और वो अपने उद्देश्य में सफल होगा।
1: और अच्छे गुरु की बात आपने कही, तो भारतीय दर्शन में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है या ईश्वर के समकक्ष तो माना ही गया है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ऐसा केवल श्रद्धावश कहा जाता है या इसका दार्शनिक आधार
0: भी? इसका दार्शनिक आधार भी है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है और इसका मनोवैज्ञानिक भी। कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। सामान्य बात है कि एक व्यक्ति है, वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को कुछ पता नहीं है। बच्चा पैदा होते ही जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पूछता है कि मुझे क्या करना है। अपनी माँ से कई बार लड़ता है, अगर उसकी माँ ही उसको ठीक रास्ते पे पहुँचा दे तो माँ ही गुरु हो जाती। बहुत से ऐसे उदाहरण है जिन माताओं ने अपने बच्चों को ऐसी रास्ता दिखा करके बहुत महान ऋषि बनाया। जब वो गुरु के पास जाते तो रास्ता कौन सही है, ईश्वर का अभिप्राय है कि जो उन्नत, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी स्थिति जहाँ उन्नत की स्थिति है, जहाँ पर जाकर के सभी ऐश्वर्य मिल जाते हैं, उस ऐश्वर्यवान व्यक्ति के पास तक जाने के लिए रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है। तो जब गुरु रास्ता दिखाएगा तो व्यक्ति ईश्वर से भी मिल सकता है। गुरु रास्ता दिखाएगा तो व्यक्ति धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति, जिसको कुछ नहीं समझ में आता था, उसको भी गुरु कहां से कहां पहुंचा सकता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कहां था, चंद्रगुप्त मौर्य को कहां से प्राप्त किया चाणक्य ने, और उस चाणक्य ने उसको सम्राट बनाया। तो ये गुरु का ही प्रताप है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य ही सबसे बड़े ईश्वर हैं। इसलिए जब अपने जीवन में कोई व्यक्ति सफल होता है, जब अपने जीवन में परम तत्व पर पहुंचता है, तो उसके लिए उस तत्व तक पहुंचाने वाला एक ही व्यक्ति है और वह है गुरु। इसलिए वो व्यक्ति अपने गुरु को ही परम ईश्वर मानेगा, वो अपने गुरु के सिवा दूसरे को ईश्वर नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि यहाँ तक पहुंचाने वाला उसका ही गुरु है। इसलिए गुरु का महत्व सबसे बड़ा है। दूसरी बात है कि विज्ञान की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यही एक तारतम्य होता है कि जब गुरु और शिष्य के बीच का जब अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो गुरु भी खुल करके अपने शिष्य से अपनी बात बताता है, शिष्य भी और गुरु भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान जब निसंकोच होने लगता है तो धीरे धीरे ज्ञान का संप्रेषण होता है, आचरण से, व्यवहार से, मानसिक स्थितियों से, तो एक दूसरे में उनका ज्ञान भी ट्रांसफर होता चला जाता है। और ये धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती हैं, ये बहुत माइन्यूट स्तर पर जाकर के बातें बनती हैं। आज के दृष्टि से, भौतिक प्रयोगशालाओं की दृष्टि से अगर हम इस बात को समझना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, परंतु जब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के परा मेटा लेवल्स के, विज्ञान के भी मेटाफिजिक्स के लेवल, किसी ज्ञान के उस परम तत्व के लेवल पर अगर हम जाएंगे तो ज्ञान हमको गुरु से ही मिल सकता है और वह गुरु हमको अपने उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। इसीलिए गुरु को परम तत्व कहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कभी अगर व्यक्ति अपने मन में अपने गुरु का ध्यान कर ले और उसको पता है कि मेरा ये गुरु है और मुझे इससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो गुरु के पास भौतिक रूप में न जा करके भी अपनी साधना के द्वारा, अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने गुरु के पास का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही ज्ञान प्राप्त किया था एकलव्य ने। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी। मूर्ति बनाने के बाद जब एकलव्य को पूछा गया कि तुमने ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो उन्होंने, मैंने गुरु द्रोणाचार्य से किया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको भौतिक रूप में ज्ञान नहीं दिया, किस रूप में दिया? इसलिए गुरु का जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व जो है वो हर व्यक्ति के अंदर है। वो जो गुरु तत्व है, यदि गुरु में वो गुरु तत्व है, गुरुत्व है, अगर वो बात है तो वो अपने शिष्य तक पहुंचा लेगा। परंतु यदि योग्य शिष्य है और शिष्य में यदि ये गंभीरता है तो वो गुरु का वो ज्ञान को भी प्राप्त कर लेगा। दोनों में ये बात आती है, गुरु चाहे तो अपने शिष्य को वह ज्ञान दे सकता है, परंतु अगर शिष्य भी चाहे तो उस गुरु से पूरा का पूरा ज्ञान ले सकता है।
1: बहुत ही सुंदर बात आपने बताई उदाहरण के साथ भी। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज के डिजिटल युग में जब हम कहते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में हमारे हर सवाल का जवाब है, AI जो है तुरंत वो समाधान करती है समस्याओं का, ऐसे में पारंपरिक गुरु की भूमिका के बारे में क्या प्रासंगिकता है?
0: देखिए, जहाँ तक AI की बात है, जहाँ तक डिजिटल की बात है, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम हमारे पास उस लॉजिक पर चल रहा है जिस लॉजिक पर हमने सारा का सारा ज्ञान उसको इनपुट कर रखा है, डाल रखा है। और डिजिटल लेवल

0: पे कहीं वो एक जगह भंडारित हो रखा। उस भंडारित ज्ञान में से हमने उसको एक प्रश्न पूछा
1: जी,
0: तो उसने क्या किया कि वहां से उसमें से टटोल करके जितना उसको समझ में आया उसने उठा के आपको दे दिया, जैसे आपकी आपकी चैट जीपीटी है
1: जी,
0: या एआई के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान है
1: जी,
0: परंतु किसी न किसी के द्वारा तो वह ज्ञान एक जगह रखा गया है
1: जी, बिल्कुल
0: वहीं से वो इकट्ठा करके लाएगा
1: जी।
0: यदि मेरी लाइब्रेरी में कोई पुस्तक है तो तभी वो पुस्तक मुझे मिल पाएगी, क्योंकि वो पुस्तक मेरी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। जो ज्ञान मुझे आज एआई या लोग सोचते हैं यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, यदि मेरे एआई में या मेरे उस भंडार में वो चीज है तभी मिल पाएगी, यदि उसमें नहीं है तो कहाँ से मिलेगी। परंतु जो वास्तविक गुरु है उसके पास जो गुरु का गुरुत्व है, जो उसमें मूल रूप में गुरु है, उसने ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, वो तो सजीव है ना
1: जी,
0: और वो एक प्रकार का हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को हमने ऐसा बना रखा है, वहाँ पे नॉलेज है। आज हमारी लाइब्रेरी भौतिक रूप में नहीं होकर के इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, तो उसके द्वारा ज्ञान को लेना, लाइब्रेरी से ज्ञान को लेना, परंतु गुरु से ज्ञान को लेने में बहुत बड़ा अंतर है। ये इतना बड़ा अंतर है कि गुरु, मैंने आपको कहा कि जैसे वो अपने ज्ञान को पूरा का पूरा संप्रेषित कर सकता है, ऐसे इंटरनेट से ज्ञान को लेकर के हमारी उसमें नहीं आ सकता है। गुरु का जो महत्व है वो किसी भी स्थिति में कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है
1: जी।
0: और अच्छे शिष्य को अगर कोई गुरु वास्तविक रूप में उसका कोई गुरु, जो जिसको हम ऑफलाइन गुरु जिसको कहते हैं, अगर उसको कोई ऑफलाइन गुरु मिलता है तो वही उसका सही प्रश्नों का जवाब दे सकता है। बहुत से गुरु ऐसे हो सकते, ठीक, इंटरनेट ये आवश्यक है जीवन में, ये आपके ज्ञान को संपुष्ट करने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छे हैं। जो ज्ञान गुरु ने आपको बताया उसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए या उस लेवल पे दुनिया क्या क्या सोच रही है उसको जानने के लिए ये डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है। परंतु हम ये माने कि डिजिटल मीडिया ही सब कुछ है और इसके द्वारा ही हम पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा ज्ञान के संप्रेषण के लिए, आने वाली शिक्षा के लिए, देने वाले शिक्षक। अच्छा शिष्य कार्यकर्ता या अच्छा व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो एक अच्छे गुरु के पास हो
1: जी।
0: ये नहीं बन सकता कि वो एक अच्छे, उसके पास बहुत अच्छा डाटा बैंक है, उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके पास बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, इससे सहमत नहीं हूं। और मैं कहता हूं कि यह संभव भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमको जो अभी मिल रहा है वो अभौतिक है और जो हमारे पास ये सारी चीजें ये भौतिक है। ज्ञान इतना ही नहीं है, ज्ञान का जो मूल, ज्ञान का जो आधार है वो आत्म तत्व है, और आत्म तत्व को अगर हम समझते हैं, जैसे मेरा ये जो हार्ड मांस का शरीर है और इसमें मैं रह रहा हूं, तो ज्ञान मैं में है, ज्ञान शरीर में नहीं है
1: जी।
0: तो जो मैं वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, उसमें ज्ञान होता है, वो कैसे रूप में संप्रेषित होता है, आज के विज्ञान की दृष्टि से ये व्यवहार अभी भी हमारा इंस्ट्रूमेंटल नहीं हुआ, और जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा उस दिन लोगों को ठीक समझ में आएगा। इसलिए लोग आज की दृष्टि, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से लोग इतना ही समझते हैं, ज्ञान सिर्फ इतना ही है जो लाइब्रेरियों में है, ज्ञान इतना ही है जो इंटरनेट में है, ज्ञान इतना ही है जो हमको एआई बता रहा है, ज्ञान इतना ही है जो हमको कंप्यूटर बता रहा है। इस सब को पूर्ण करने के बाद भी जो बचता है वही ज्ञान है, और वो गुरु ही दे सकता है।
1: बिना सीखे हम ये सब भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा कि गुरु की जो भूमिका है वो हमेशा रहती है, और जितना हम समझते हैं उससे इतर बहुत सारा ज्ञान है जो हमें गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारा जो समाज है उसमें आध्यात्मिक स्तर पर गुरु का जो स्थान है उसे तो अक्षुण्य रखा ही गया है, लेकिन घर परिवारों में अनुष्ठान से जुड़े हुए भी बहुत सारे गुरुजी होते हैं जिन्हें सम्मान दिया जाता है समय समय पर। अगर हम अपने गुरु के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहें गुरु पूर्णिमा में, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: हर परंपरा में अपनी व्यवस्थाएं होती
1: जी।
0: हैं। कुछ लोग अपने शिक्षा गुरु के पास जाते हैं
1: जी,
0: उनको अपना जो भी उनका पत्रम पुष्पम फलम तोयम से उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, एक पक्ष ये है। दूसरा ये है कोई दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु का भारतीय परंपरा में कोई मंत्र लिया, किसी भी कार्य विशेष को दृष्टिगत लेकर के उन्होंने उसको लिया और उसका धीरे धीरे उन्होंने दीक्षा ली, तो उसके आधार पर वो दीक्षा गुरु के पास जाते हैं। जो दीक्षा गुरु हैं तो दीक्षा गुरु उनके पास जाकर के भी वो उनको मिलना, पूजन करना। पूजन का अर्थ और मिलने का अर्थ आजकल पूजा का अर्थ सिर्फ लोग सोचते हैं कि जो हम एक कर्मकांड करते हैं उसकी दृष्टि से उसका ये कुछ आवश्यक नहीं है। जब अगर हम अपने गुरु के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रणाम करके चले आते हैं तो उससे उनके मन में या उनको भी एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। कारण इतना है कि पूजन का अभिप्राय है कृतज्ञता
1: जी।
0: अगर हम किसी भी व्यक्ति के पीछे कृतज्ञ हैं कि हमने सोचा कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया या मैं आज अपने गुरु की कृपा से कुछ कर पा रहा हूँ तो उनके प्रति मेरा एक सम्मान रहना चाहिए
1: जी।
0: मेरी एक कृतज्ञता रहनी चाहिए, मुझे एक न एक दिन जाकर के उनके पास जाकर के मिलना चाहिए। तो समाज में जो गुरु तत्व या गुरुत्व का या जो मूल आधार है वो है कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता बनी रहे, अगर हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया और हमने कहा कि कोई बात नहीं पढ़ाया था तो उन्होंने तो अपनी नौकरी की थी, कौन बड़ी बात की, एक पक्ष ये है। दूसरे ने कहा नहीं उन्होंने हमें बहुत कुछ किया, दूसरा पक्ष ये, तो जिस पक्ष ने ये कहा कि उन्होंने मेरे जीवन को संवारा है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ा हूँ, ये पक्ष है कृतज्ञता का। और ये पक्ष है कि कौन से उन्होंने क्या किया, वो है कृतज्ञता का। इसलिए कभी भी गुरु आचार्य शिक्षिता शिष्य निरोगाच चिकित्सका, हमारे यहाँ कहा गया है कि आचार्य से पढ़ने वाले बहुत से छात्र पढ़ करके निकल जाते हैं। कितने ऐसे शिष्य हैं जो अपने आचार्य को अपने गुरु को याद करते हैं, बहुत कम करते हैं
1: जी,
0: बहुत कम करते हैं। परंतु कभी गुरु को इस चीज का कोई मलाल नहीं रहता है कि मेरे शिष्यों ने मुझे याद नहीं किया। परंतु जो शिष्य अपने गुरु को याद रखता है उस शिष्य के और जो शिष्य अपने गुरु को याद नहीं रखता, उन दो में बहुत बड़ा फर्क आता है। अगर आप इन दोनों को लेकर के आप चलते हैं, एक अपने गुरु को याद रखने वाला और एक अपने गुरु को भूल जाने वाला, ये दोनों को अगर आप याद देखते हैं तो जो गुरु को याद रखता है उसके जीवन के बहुत से डाउट उत्तरोत्तर क्लियर भी होते हैं। कुछ नहीं तो अपने जा करके अपने गुरु से पूछ सकता है कि मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसके संदर्भ में क्या आपका हो, तो गुरु उसका उद्धरण देगा। जो याद नहीं रखता, जो कृतज्ञ, जो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है जहां हम उसको कृतज्ञता भी कह सकते हैं, उस स्टेज पे जाकर के उस व्यक्ति का धीरे धीरे जीवन में बिखराव रहता है। अगर वो आगे गया तो उसको कोई समस्या है तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। परंतु अगर उसके पास एक चैनल है तो वो जाकर के पूछ सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। इसको आज की दृष्टि में इसको मेंटर कहते हैं। हमको कम से कम एक मेंटर चाहिए, तो आप गुरु के रूप में लोगों ने, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है। परंतु आजकल धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्थाओं में ये चीज आ रही है, वो गुरु को गुरु की व्यवस्थाएं नहीं है
1: जी।
0: तो ये बहुत से कारण है, ये लोकतंत्र की दृष्टि भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो हमारे चीजों को हम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल करके उनको लेते हैं। और नेचर का एक गुण है, इसीलिए हमने मेंटर की बात की, नेचर का एक गुण है कि उसको व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक है, उसी को हम गुरु कहते हैं। और आज हम धीरे धीरे उसके नए नए रूप दे रहे हैं। परंतु जो प्राचीन माध्यम था, जहां गुरु का संबंध था, गुरु किसी भी चीज से बना नहीं रहता था। गुरु, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप गुरु जी को कुछ दे दो, नहीं है तो मत दो। उसने क्या कहा, पत्र पुष्प फल और तोय, ये चार चीजें कही गई है। और इन चार चीजों में से कोई भी चीज आपके पास आपने गुरु जी को दे दो, नहीं है तो जाकर के मिल लो। परंतु आज का जो दृष्टि है, आज हम हर स्टेप पर वहाँ पर आ गए जहाँ हम धन के आधार पर परिसीमित हो गए हैं
1: जी। इन चारों का क्या अर्थ है मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: पत्र का अर्थ है कोई भी गुरु के पास जाए तो कोई पत्ता ले लो। हमने आम का पत्ता लिया, पीपल का पत्ता लिया, कोई भी समाज का कोई भी पत्ता लेके गुरु जी को दे दिया, साहब उनके पास गए, खाली हाथ नहीं जाना
1: जी।
0: पुष्प है, कोई फूल ले लिया, फूल माला ले ली, गुरु जी के पास गए, आज गुरु पूर्णिमा है तो हमने भाई गुरु जी के पास गए, कुछ फूलों का गुच्छा ले गया या कुछ गुलदस्ता ले लिया, माला ले ली, गुरु जी को चढ़ा दिया,
1: चाहे चरण वंदन किया, उन्हें पहनाई जी।
0: पुष्प ले लिया, पत्र पुष्प फल, कोई फल ले लिया, अतोई पानी ले लिया, जल ले लिया, एक कलश ले लिया, उस कलश में हमने आम के पत्ते डाल दिए। तो ये सब लेकर ईश्वर के पास जाने का भी यही विधान है। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो यही चीजें ले जाना, पत्र पुष्प फल तोय, और अगर गुरु के पास जाते हैं तो यही ले जाना है। हम गुरु तुल्य के पास भी जाते हैं तो यही विधान कहा गया है।
1: भारतीय दर्शन में गुरु शिष्य की बेहद प्रेरक कथाएं हमारे सामने हैं। हम उनसे भी ये सीख सकते हैं कि जीवन में हम अपने लिए कोई भी लक्ष्य तय करें उसमें गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। प्रोफेसर रवि प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, बहुत ही रोचक ज्ञान आपने हमें ये दिया। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: अभी आप गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व विषय पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। आमंत्रित अतिथि थे प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीन वेद वेदांत संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका, और इस खूबसूरत शाम में बेहतरीन नगमों के साथ आज मैं हूं आपके साथ, आपकी खिदमत में तरन्नुम जहां। लीजिए सुनिए ये पहला गीत फिल्म आशिकी से।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। अब समाचार होंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
4: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
3: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
4: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
3: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
5: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
3: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
6: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
7: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टीयर गैस, केनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
3: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
8: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
9: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश

0: की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
1: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रूपये पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
4: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
3: Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used.
5: The government repeatedly clarified that no bullets were fired and that tear gas was used. And if no bullets were fired, then the question of giving an order to fire does not arise at all. Moreover, the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister.
3: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Mr. Gandhi and demanded an apology from him in the House. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred but a deep expression of the youth and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. On the passage of the anti-paper leak bill in the Lok Sabha, Education Minister Prahlad Joshi said the legislation aims to dismantle the paper leak ecosystem and increase transparency, credibility and fairness in the examination process. Home Minister Amit Shah has congratulated every student in India on the passage of the bill. In a social media post, Mr. Shah assured that the Narendra Modi government will spare no one who attempts to imperil the future of students and will leave no stone unturned to ensure that they

9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप खबरें सुनेंगे। नमस्कार 55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। साढ़े 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइश फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बड़े सखीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। सुर्खियों में यह प्रोग्राम नशर होगा 11:30 पर और सबके 11:45 पर कवालियां पेश करेंगे अजीज अहमद खान, वारसी कबाल और हमनवा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे रोनू मजुमदार का फ्लूट पर बजाय राग रागेश्वरी। शब के 12:30 आखिरी शब प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशी की जाएंगी और शब 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। यह था एक मुख्तसर तारुफ से मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज आप महसूस होंगे भूपेंद्र

ये उन आम लोगों के लिए हम बताते हैं जो किसी तरह की एलर्जी या इसके नुकसान से नहीं वाकिफ है। बहरकैफ ये कुछ तिब्बी फवायद थे मेथी के हवाले से। मेथी दाने बड़े फायदे के हैं और बहुत इसके अलावा भी और कई फायदे हैं, लेकिन वक्त की तंगी है। आज मशवरे सेहत के सिलसिले में बस इतना ही। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। ओली जब सुनिए जनाब तालिब रामपुरी का तहरीर करदा ड्रामा, काश मैं लड़का होती।

0: अच्छा ओ आशा, देख बेटी शायद विनोद आया है। अच्छा मैं देखती हूँ, पता नहीं ये लक्ष्मी कहाँ मर गई, हर वक्त गायब रहती है। विनोद
1: जी हाँ जी आवाज
0: जीते रहो बेटा जीते रहो, आओ अंदर आ जाओ। कितनी बार कहा है यूं ही आ जाया करो।
1: ये तो एटिकेट।
0: अरे रहने दे अपनी एटिकेट वेटिकेट, ये कॉलेज नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है।
1: गलती हो गई माँ जी, अब ख्याल रखूंगा।
0: हमेशा यही कहते हो फिर भूल जाते हो, पता नहीं कैसे प्रोफेसर हो तुम। बैठो, मैं आशा को भेजती हूँ। अच्छी भले किरण की शादी में गई थी, जब से आई है मुंह लपेटे पड़ी है, कमरे से निकली ही नहीं।
1: सहनी से बेचैनी का दुख होगा माँ जी, खालसा का दिन वैसे भी बहुत कोमल है।
0: नहीं बेटा ये बात नहीं है, सब किस्मत के खेल है।
2: कौन आया है माँ?
0: अरे आप
1: कैसे आए थे?
0: ठीक हूँ, प्लीज एक मिनट, मैं अभी आई।
1: ये आयशा ने क्या हाल बना रखा है माँ जी, बाल बिखरे हुए, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई, ये सब क्या है?
0: मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ, अब तुम ही कोशिश करो, तुम्हारी बात मानती भी है। अरे लक्ष्मी, ओहो देखा तुमने, कमबख्त फिर पड़ोस में जाकर मर गई। जी चाहता है निकाल बाहर करूं मुर्दार को, फिर तरस आ जाता है, गरीब माँ की बच्ची है और अभी उम्र क्या है, मुश्किल से 13 बरस की होगी।
1: जाने दीजिए माँ जी, बच्ची ही तो है।
0: क्या बताऊं बेटा, जब से अपने पड़ोसी अहमद मियाँ के लड़के की शादी हुई है, बच्चे घर में टिकते ही नहीं। शाम हुई और टीवी, टीवी क्या आया है उनके घर में, कयामत आ गई है। जरा सा घर जहेज से अटा पड़ा है, तिल धरने की जगह नहीं, ऊपर से सारे मोहल्ले के बच्चे कच्चे जमा रहते हैं, हैरत है उन लोगों पर।
1: मालूम होता है किसी बड़े घर हाथ मारा है अहमद मियाँ ने, पहले तो देखे भी नहीं था उनके यहाँ।
0: बड़ा घर, झूठी शान की खातिर लड़की वालों ने गिरवी डाल दिया है खुद को, बेचारे करते भी क्या, कब तक बिठाए रखते लड़की को, गरीब लड़कियों की शादी वैसे भी टेढ़ी खीर है।

0: डाल दिया है खुद को। बेचारे करते भी क्या, कब तक बिठाए रखते लड़की को। गरीब लड़कियों की शादी वैसे भी टेढ़ी खीर है।
1: सब दौलत के गलत इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। दौलत की ज्यादती और नुमाई से इस बुराई की जड़ है। कमजोर तबका खाना खाए किस रहा है।
0: ठीक कहते बेटा, फिर भी सारे दौलतमंद एक जैसे नहीं होते। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी शादी खुद एक मसला बन गई थी, जबकि भगवान का दिया सब कुछ था।
1: वो क्यों मारी?
0: बताती हूँ। मेरे पिताजी बहुत दौलतमंद थे, किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस मेरी शादी की। रिश्ते आते थे और ठुकरा दिए जाते थे, क्योंकि उन लोगों की नजरें मेरी सूरत पर नहीं, मेरे पिताजी की दौलत पर होती थी। वैसे भी पिताजी लेन देन की शादियों के सख्त खिलाफ थे। शादी ब्याह के मामले में सौदेबाजी से उन्हें सख्त नफरत थी। वो मेरे लिए शरीफ, मेहनती और तालीम याफ्ता लड़का चाहते थे। बहुत तलाश के बाद भी जब बात नहीं बनी तो पिताजी ने अखबार में जरूरत हाँ, तो उन लोगों ने पिताजी के दरियाफ्त करने पर जो मुतालबात या शर्तें रखी वो काफी दिलचस्प थी। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था और बहुत कुछ चाहिए था। तुम सुनोगे तो हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा।
2: देखिए राजेंद्र बाबू, फोटो देखिए, यह है मेरा बेटा।
1: अच्छा अच्छा,
2: देखा आपने कितना शानदार है
1: जी,
2: कितना सुंदर है जी। ये जितना सुंदर है उससे अधिक गुली है जी। अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ रहा है श्रीमान जी।
1: अच्छा अच्छा,
2: लाखों खर्च कर चुका हूँ इस पर, आप जाने दीजिए।
1: रुपया पैसा तो हाथ की बैल है जी,
2: बस छोटी कौड़ी का तलबगार नहीं, बस एक छोटी सी विनती है आपसे।
1: अच्छा अच्छा,
2: वो भी हाथ जोड़कर।
1: नहीं करोड़ीमल जी, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप बिना तकल्लुफ फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ
2: जी। धन्यवाद जी, वो बात

0: अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपना नर्सिंग होम खोलना है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: अब बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा सा खर्च करना जरूरी है जी। वो बात यह है कि मेरा हाथ थोड़ा तन चल रहा है, इसलिए ये शुभ काम आपके हाथों से हो जाए तो मेरा मतलब है जी, ये काम आप करा दे तो लड़का आपका जी बहुत खूब।
1: हाँ तो गिरधारी लाल जी आप भी अपनी फरमाइश कीजिए। अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं आप, फरमाइश भाई हम क्या करेंगे, ये कोई मजाक का वक्त है, हम ना तो शायर ना शायर की दुम, बड़ा फरमाइश।

0: कभी भी?
1: तौबा तौबा, मैं यानी कि सरिता मुखर्जी, MSc, PhD, etc. शर्ते, और वो भी अपने पोस्ट ग्रेजुएट भाई की मैरिज की शर्ते। व्हाट नॉनसेंस। सिर्फ ही माफ कीजिएगा, हम लोग पढ़ी लिखी एडवांस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ मैरिज में बिजनेस नहीं चलता। मेरे भाई का फोटो आपने देख ही लिया होगा।
0: जी जी।
1: बना बनाया हीरो है हीरो।

0: का मच गया। पिताजी के दिवालिया होने की खबर जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गई। इसका असर ये हुआ कि गैर तो गैर अपने भी कतराने लगे। लोगों ने मिलना जुलना तक छोड़ दिया। पिताजी भी अंदर अंदर मुस्कुराते लोगों की जहनियत पर। उन्होंने असलियत जाहिर ही नहीं होने दी थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद
1: असलियत बेनकाब हो गई।
0: असलियत बेनकाब नहीं हुई, शादी हो गई मेरी। और वो भी अचानक।
1: अचानक शादी हो गई?
0: हाँ, अचानक। इस वाकये के कुछ ही दिन बाद जो कुछ हुआ पिताजी सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन एक फरिश्ते का खत आया। लिखा था, लाला जी, आपका वाकया सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वरना ये रिश्ता मांगने वो खुद आपके पास आते। आप किसी तरह की फिक्र ना करें, आपकी दुआ से भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। आपकी सेवा करके मुझे खुशी होगी। पिताजी ने पहली मुलाकात में उन्हें पसंद

0: आपकी दुआ से भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। आपकी सेवा करके मुझे खुशी होगी। पिताजी ने पहली मुलाकात में उन्हें पसंद कर लिया। ये तो उन्हें बाद में मालूम हुआ कि पिताजी ने दिवालिया होने का नाटक किया था। फिर भी वो बुरा नहीं माने। तुम तो मिल चुके हो ना उनसे?
1: जी।
0: वो भी बहुत अच्छे मिजाज के हैं।
1: वो बड़का फरिश्ता है। मैं उसे बहुत मुतासर हूँ। मेरा ख्याल है आशा भी अपने डैडी को बहुत प्यार करती है।
0: तुम्हारा ख्याल 100% दुरुस्त है। आशा तो उनकी दीवानी है।
2: मासी जी विनोद साहब, मुझे जरा देर हो गई।
0: लीजिए चाय पीजिए। अच्छा तुम लोग चाय पियो, मैं जरा लक्ष्मी की खबर लेती हूँ।
2: जाने कहाँ चली जाती है, कम वक्त इसका कुछ पता ही नहीं लगता।
1: आशा
0: जी,
1: बहुत असफल नजर आ रही हो। अरे मुझे तुम्हारी सहेली किरण की शादी का फिक्र कर रही थी। आखिर बात क्या है? कुछ मजा नहीं करता है आशा, दिल हल्का हो जाएगा। तुम तो बीमार होकर रह गई। सहेली किरण की शादी का फिक्र कर रही थी। आखिर बात क्या है? कुछ मजा नहीं करता है आशा, दिल हल्का हो जाएगा। तुम तो बीमार होकर रह गई।
0: आपने देखा ही है किरण को, मामूली शक्ल सूरत के सामने सी लड़की है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई खूबसूरती को कोई भी नहीं देखता। उस काले गुलाब की खुशबू किसी को भी महसूस नहीं होती।
1: हाँ, अखिल खूबसूरती लोगों को बहुत कम दिखाई देती है।
0: यही वजह है लखपति बाप की बेटी होने के बावजूद उसे वर नहीं मिल रहा था। मिला भी तो ये हादसा हो गया।
1: हादसा हो गया? क्या दुल्हा को भगवान करे कुछ?
0: नहीं, दुल्हा को कुछ नहीं हुआ। हो जाता तो सब्र था। सारे मेहमानों ने चाचा जी की जो बेइज्जती हुई है, भगवान किसी दुश्मन के बिना करे। मैं समझे, पहले आग लगी, फिर सैलाब आ गया, और फिर बच्ची कुछ राख पे बह गई।

0: कि चाचा जी के यहाँ डाका पड़ गया। शादी का सारा सामान जेवरात नकदी, हद ये है कि डाकू ने कपड़े लत्ते तक नहीं छोड़े, सारी घर का सफाया कर दिया।
1: तो क्या चाचा जी अपनी पूरी बैग में नहीं रखते थे?
0: रखते थे, शादी के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बैंक से निकलवा ली थी। 50,000 तो सिर्फ दूल्हा के लिए थे।
1: तो ये सौदा 50,000 में तय हुआ था?
0: जी हाँ, साथ में दर्जनों फरमाइशें भी थी, स्कूटर, रंगीन टीवी, वीसीआर और फ्रिज वगैरह वगैरह।
1: बड़ा अफसोस की बात है। खैर तो फिर क्या हुआ?
0: इस हादसे के बाद चाचा जी लड़के वालों के यहाँ गए और अपनी बिपता सुनाई।

0: वैसे परिंदे, इन्हें तो इंसान कहना भी इंसानियत के नाम पर थप्पा है।
1: बेचारे किरण की तो अजीब हालत होगी।
0: उसने तो खुद को संभाल लिया है, मगर चाचा जी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। उनकी बुरी हालत है, पता नहीं भगवान ने उन्हें किस जुर्म की सजा दी है। हो सकता है ये सब मोहन का दिल तोड़ने की सजा हो।
1: मोहन? मोहन कौन?
0: बहुत अच्छा लड़का था, किरण को बेहद चाहता था। चाचा जी ने मोहन का रिश्ता बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब था। वो चुपचाप एक लफ्ज कहे बगैर चला गया और फिर उसका कोई पता नहीं लगा। लोग कहते हैं मोहन मर गया है, उसने उसी दिन खुदकुशी कर ली थी। सच बोलो, मुझसे किरण और उसके घर वालों का दुख नहीं देखा।

0: में कितनी देर से खड़ी हुई हूँ।
1: किरण मेरी प्यारी बहन, बैठो ना, बैठो।
0: बैठती हो, क्या सोच रही थी?
1: उस डोली के बारे में जिसे कहार उठाने से पहले ही भाग गए।
0: डोली भारी हो तो कहार भाग ही जाते हैं। बेचारों को अपनी जान थोड़ी

तेरा गम मुझे मार डालेगा देना। मगर दुखी है कौन पागल, मुझे तो खुशी है कि भगवान ने ऐसे लालची और तंग नजर लोगों से मुझे बचा दिया। शादी हो जाती तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। तेरे खत्म मैं बहुत बड़े अजाब से बच गई हूँ। जो हुआ उसे जाने दे, भूल जाओ उसे। लेकिन किरण

0: करना।
1: हद कर दी फिरावत की।
0: आशा, आशा भगवान जानता है मुझे अपने साथ हुए सुलूक का जरा भी मलाल नहीं। सिर्फ दुख है तुम्हें कि मैं तुम्हारे खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। कुछ नहीं कर सका आशा, कि मैंने बड़े प्रेम मुरब्बती से मेरी कोशिशें बदता में फेर दिया।
1: अजय पूछते इस किरण की बच्ची से
0: क्या क्या क्या यहाँ पे।
1: तुम तकलीफ मत करो आशा रानी, किरण की बच्ची खुद हाजिर है और आप दोनों से माफी चाहती है। खासतौर से विनोद साहब, आप मुझे माफ करें, मैंने आपको बहुत सताया है। और हाँ, अगर आप वाकई मेरा दुख बांटना चाहते हैं तो फौरन यहाँ से चले जाइए।
2: किरण,

पहला ईमेल इन्हीं का हमें मौसूल हुआ है और दूसरा ईमेल है ऊपरकोट मोहल्ला चौक कुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी और आप हैं अलीगढ़ वाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार और कुलदीप गांधी और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा साहब का और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश

मधुबालुजा और सागर बालुजा, मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, मायरा सुरोशे, काटा रोड वाशिम से, और प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा, आशीष कोटेचा की फरमाइश है, जयराज राजकोट से, माफ कीजिएगा, जंक्शन प्लॉट राजकोट से, और बसंत, ये तो ईमेल हम अभी कुछ देर पहले शामिल कर चुके हैं। अगला ईमेल है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहेब और बिहारी बाबू का, और आप हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से, मोहम्मद ऐसा, खदीजा बेगम, मोहम्मद अल्ताफ और अहले

बारह दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और आप हैं पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। वैष्णव कॉलोनी सनावत से फरमाइश आई मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शादाब खत्री की, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है गणेशपुर गंजी डंडवारा एटा यूपी से शेख शमा परवीन एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान का। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं।

और भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है बचकमल डॉक्टर बसंत बेगो मोतीलाल यादव ने, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं राजधानी रायपुर से नीलू में एक नीलम साहिबा, साथ में है वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, और अगला ईमेल मोहम्मद करीम जख्मी नजमा बेगम नाज बेबी फातिमा गाजी का रेलवे रोड गंज टुंडवारा से हैं, और नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल और उषा पाटिल, और आप हैं पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुयश आशीष गौड़, आवास विकास कॉलोनी।

राज मधुराज अवत और राशि रक्षित, और ये ईमेल मौसूल है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का, सादुल शहर राजस्थान से। अफजालता शाहीन सुल्ताना और सोनू तस्नीम है बरकताना से, और ये फरमाइश ईमेल पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से मिला है अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत का। और इसी नकमे को सुनने के मुंतजिर है हमारे कुछ और सामीन, उनके नाम भी शामिल कर लेते हैं। गन्नूलाल रजक, साथ में है के आर साहू, अश्वनी वर्मा, आपने भाटापारा छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से ये फरमाइश अमीर साल की है। और इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा है बिशनपुर गिरडी झारखंड से, और विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से। और इसी नकमे को सुनना चाहते थे आदर्श नगर मरोड़ पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा।

आप पटियाला पंजाब से और चमन पार्क दिल्ली से हैं, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा, और ये फरमाइश मेल लेवाई छत्तीसगढ़ से मिला है, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी का। सुखविंदर सिंह जोड़ा सेठी दीवाना कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं। अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, सरलाही सोपनाहा नेपाल से सुनना चाहते हैं इस नकमे को। उस्मान शेख वजी साहरा बनो करिश्मा की फरमाइश परसोगा लातूर से है और ऊंचे गांव नांदे

ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का संबलपुर कांकेर से, और गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी हैं अजमेर शरीफ राजस्थान से।

नीत निशु, इसी नगमे की फरमाइश की है कल्पना ताई लोखंडे, लक्ष्मण और लोखंडे शैलेश ने गाड़गे नगर यवतमाल से, और पश्चिम थोक गंजोटनवा से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी, नईम रजा सिद्दीकी भी साथ में हैं, और आप हैं कंवर कॉलोनी बड़वा एमपी से, खरगोन से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, और ये फरमाइश नजफगढ़ जय विहार से मिली है फारूक शाहरुख, शबाना और अहले खाना की जानिब से। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। मोहम्मद आसिफ सागर, मोहम्मद नुमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख हैं गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से, इसी

और भरत कुमार का कुलासर से नाम जोड़े से हैं प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े और संकेत बगाड़े, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, अभय गुजराती कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं। और ये अगले इन्हें रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। अल्तमश समीना मुदस्सर जुम्मा नगर खंडवा से हैं, ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ। प्रकाश निषाद साथ में, बल्लू निषाद और सौरभ निषाद रायगढ़।

हरिदेव अम्बाड़े जानवीर अम्बाड़े वैष्णवी अक्षर अम्बाड़े काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से छत्रपति संभाजी नगर से राजेश तावले पाटिल राजदीप राजेश और राशि राजेश और कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी मीनाक्षी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से और ये परमेश्वरी है नर्मदा पाक मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर ने पटेल मुजाहिद पटेल और नितिन पटेल की और सुशांत प्रिया झा मास्टर निवेश कुमार लड्डू कुमारी हैं टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर दिल्ली से और ये फरमाइश मौसू हुई है अयोध्या नगर अलगाव से विनोद कुमार ढवले विनोदाई और प्रथमेश ढवले की विठल यादव ये शामिल हो चुके हैं जरा मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट बार करवाल मंडी टटीरी वापस से आसिफ अली खान मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान अनिल उषा बरांडे अभिषेक हमशेरी मोरांडे यवतमाल से शामिल हुए अगला ई मेल मिला है जयपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहिनी चौहान कल्पित के चौहान का और कल्पना मदंजा मानव मैं की फरमाइश है निर्मला अपार्टमेंट बिलाड वापी गुजरात से और आप हैं नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम बगपुरिया पथरिया से हैं अगला ई मेल रिपीट हो गया इसको भी करते हैं साइड लाइन और उसके बाद वाला भी रिपीट मंसूरी दी फातिमा मंसूरी बांदा यूपी से फरमाइश आपकी आई है और राजू माठे गजन माठे ज्ञानेश्वर माठे बुल्लाना महाराष्ट्र के जलगांव जामुस से हैं और ये फरमाइशी मेल अकोला महाराष्ट्र से मिला है रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले का

0: विश्लेषक के जी सुरेश। सुरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: तो जैसा कि सुरेश जी हमें पता है कि आज संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया और अब ये कानून बन गया है। 2024 में इस कानून को बनाया गया था, अब फिर से संशोधन करके और इसमें काफी परिवर्तन किए गए हैं, तो इसके प्रावधानों की हम चर्चा करें। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुख्य रूप से इस कानून को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और सरकार कौन सा लक्ष्य इसके माध्यम से अचीव करना चाहती है।
1: अंकित जी धन्यवाद। देखिए, अभी अपने विद्यार्थियों का आपने प्रदर्शन देखा दिल्ली में
0: जी,
1: और जिसके चलते सरकार ने ये आश्वासन दिया विद्यार्थियों को कि सरकार की तरफ से यह पूरी प्रतिबद्धता है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको इंस्टाग्राम के माध्यम से भी और अपने वक्तव्यों के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष उन्होंने जो दिया संसद सत्र में, उन सबके माध्यम से उन्होंने यह बिल्कुल अपनी तरफ से प्रतिबद्धता जताई कि सरकार पूरी तरह इस पूरे सिस्टम में एग्जामिनेशन

और हायर फाइंस है। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम के तरीके से है तो जो पहले 5 साल का प्रावधान था उसका न्यूनतम 7 साल कर दिया गया है और 10 करोड़ तक का जो है पेनल्टी इसमें लगा दिया गया है, जिसमें जब्ती भी हो सकती है आपके प्रॉपर्टी की। और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को अब पूरी तरीके से 2 महीने का ही समय दिया गया है कि सारा इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर होना चाहिए। और जैसे आपने कहा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो है होना चाहिए, डे टू डे हियरिंग्स होने चाहिए और 3 महीने के अंदर चार्जशीट जो है वो लग जानी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी मैल प्रैक्टिस है

0: आएगी, तो मैं समझता हूं कि जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और पारदर्शी तरीके से हमको उनका चयन भी करना पड़ेगा, जो भी परीक्षा पत्र तैयार करेंगे या पेपर सेटर्स जिनको कहते हैं,
1: जी
0: उनके चयन में भी हमको जो है ऐसे व्यक्तियों को ही देना है जो अपने विषय के विद्वान तो है ही है, साथ में ही जो है उनका जो व्यक्तिगत उनका जो चरित्र है उस पर भी जो है किसी प्रकार का दाग ना हो, और जिनका जो है प्रतिबद्धता, जिनका समर्पण, जिनका जो है ईमानदारी, जिसके लिए जाने जाते हो, तो ऐसे लोगों को ही जो है हमको ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। और हाँ, ये प्रावधान भी किए गए हैं कि कोई अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर में गया तो उसको सजा भी मिलेगी, पेनल्टी भी लगेगी, उन सबको उसका तो इस कानून ने व्यवस्था किया ही है।
1: जी तो बहुत तरह तरह की, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन्स हैं वो भी परीक्षाएं लेते हैं, तो ये कानून क्या सारे तरह के जो परीक्षाएं हैं और जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्तर पर लेते हैं, सभी पर समान रूप से लागू होगा?
0: नहीं, बिल्कुल, ये पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की गई है, सार्वजनिक जितने भी परीक्षाएं हैं उन सब में ये कानून लागू होगा, ये नहीं कि ये सिर्फ नीट पर लागू होगा। और अब राज्य सरकारों को ये तय करना है, ये तो यूनियन गवर्नमेंट के जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा चाहे नीट हो, सीयूईटी हो, सब पर यह लागू होगा, लेकिन राज्य सरकारें जो कर रही है उसके लिए उनको भी अपना व्यवस्था, या इसको जो है लागू करें या उनको अपना व्यवस्था करनी होगी।
1: जी तो इसको लागू करने के लिए, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए किस तरह का एक तंत्र की जरूरत है? जैसा आपने खुद ही अभी कहा कि

0: विचार से इस तंत्र को भी और बेहतर बनाने की जरूरत है, जहां पर पूरा सरकार के नियंत्रण में ही हो और निजी क्षेत्र की या निजी वेंडर्स की भागीदारी कम से कम हो?
1: देखिए, अब जैसे निजी विश्वविद्यालय भी हैं कई,
0: जी,
1: तो उनके लिए कितना स्वीकार्य होगा ये इस बात को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्त बॉडी है
0: जी,
1: और ये विश्वविद्यालयों को ये अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ, हम जवाबदेही जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रैगिंग है। अब रैगिंग में जो है एंटी रैगिंग का पोर्टल बना हुआ है, तो अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो शासकीय हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, वो एंटी रैगिंग पोर्टल पे, एंटी रैगिंग पे वो कंप्लेंट कर सकता है, तो तुरंत विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया जाता है।
0: जी सुरेश जी, आपने बहुत ही सुझाव अच्छा दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे

की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तजाम हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई कार्रवाई पर तश्वीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतादद बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे।

इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंग की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर जेलेंस्की और वजीर आजम नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें खत्म की हैं और दोनों मीटिंगें मुस्बत और नतीजा खेज रही हैं। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी, सचिन सीवच, अंकुश पंघाल और नरेंद्र

आई पर अपोजिशन के शोरगुल के सबब मुलतवी करना पड़ी और उसकी वजह दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात नहीं हो सका। कल लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉ हेमंत बिस्वा सरमा से बात की और बालाई आसाम में तबाहकुन सैलाब के पस मंजर में जारी राहत सरगर्मियों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में आसाम के वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने जमीनी सूरतहाल से मुतालिक मालूमात हासिल की और यकीन दिलाया कि मरकज सैलाब से मुतासिरा इलाकों में राहत बहाली और तामीर नौ के लिए दरकार हर जरूरी मदद की फराहमी जारी रखेगा। इस दौरान ओडिशा में सैलाब से पैदा हुए

मुक्केबाजों अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी, सचिन सीवच, अंकुश पंघाल और नरेंद्र बेरवाल अपने अपने जुमरों में मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह उन्होंने मुल्क के लिए तमगे यकीनी बना लिए हैं। कल का दिन भारत के लिए मुक्केबाजी दस्ते के लिए बेहतरीन रहा क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों ने अपने सभी 5 मुकाबले जीत लिए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तजाम हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को

नहीं की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के सम्मान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वीं जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। इसमें दुनियाभर के तकनीकी विशेषज्ञ, टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप, निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे।

0: in men's 90-plus kg categories registered victories today. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्य रात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ फिल्म मुगले आजम से लता मंगेशकर व अन्य आवाजों में।

अगला गीत फिल्म शोर से सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर, मुकेश व अन्य आवाजों में। संगीत से पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं संतोष आनंद।

0: अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत अंत में आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज है और फिल्म हम दोनों से। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित

डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राजकोष विभाग के अनुसार इन प्रतिबंधों के अंतर्गत 8 तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना

0: ओर से वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के

0: कार्यक्रम
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांता।
2: जय

0: अर्चना कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे प्रसन्न वेंकट दासुरु की रचना गण के स्वरबहु।
1: गहन के सुलभ

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 होने को है। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे तालम वाद्य कचहरी एमवी चंद्रशेखर की गायन, लंबित तीन ताल, द्रुत लय विन्यास।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

सुनेंगे आप देशभक्ति गीत। प्रातः 5:30 का वक्त है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का।

ठीक 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 6:40 पर चिंतन। चिंतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भगवान महावीर के उपदेश, 6:45 का वक्त रहेगा श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 2। संगीतिका, इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा आज सुबह 7:10 पर। प्रातः 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: ज्ञानी बुझता है। सब जो संतो का धर्म करता तेरे तेरा जो का जो करता है।
1: कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सत समावे रिग करे अपर तू।
2: राम नाम देवा मैं सूरना ये ले प्रच जायना अनुकम खंदर पाए। जुज में जोर चली चंद्रावल कान के सुजा दुम पया, पारजात गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग किया।
1: कल मैं बेद अखरबन हुआ ना खुदाई अलो बया, नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुरुप ठाणिया मिल किया।